किस ही जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे मान करे तुद पावे, होर केती चख चख आवे जावे, जिनका पख करे तू स्वामी, तिनकी ऊपर गल तुद्याणी है। हर हर नाम जिन्नी सदा ते आया, तिन्नी गुरप्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब मैं वरतै हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दा दसाणी है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय धरी जिन तरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अग्नि उपाय ईंधन में बाधी, सो प्रभ राखे पाई है। जी जंत कौर जिक संबाहे, करण कारण समराथ्या पाहे, खिन में थापो थापनहारा, सोई तेरा सहाई है। मात गर्व में जिन प्रतपालिया, सास ग्रास हुए संग संभालिया, सदा सदा जपिए सुप्रीतम, वड्डी जिस वडे आई है। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब निवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्व सुधारण, किस कीमत कही न जाई है। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वसिया हर भगवंता, मात पिता सुत बंद पाई, जिन ए सृष्टि उपाई है। प्रभ आए सरना पव नहीं करना, साध संगत नीचो है तरना, मन बच करम्या राधे करता, तिस नाही कदे सजाई है। गुण निदान मंथन में रव्या, जन्म मरण की जो न पव्या, दुख विनाश की आ सुख डेरा, जा तृप्त रहे आ गाई है। मीत हमारा सोई स्वामी, थांथनंतर अंतर जामी, सिमर सिमर स्वामी परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तंता, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने, लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊंचा था हो अगम्य अपारा,

गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प धरी सब आगै, जग मै नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे, सास ग्रह संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग पज अचुत स्वामी, दरगह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाहै, मिल साधु स्वामी रावणा, शास्त्र सिमरत वेद वखाणी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडभागी, बहुना जो नी पावना, जिसनो बिसरै पुरख विधाता, जलता फिरै रह नित ताता, अकिरत घणै कौ रखै ना कोई, नरक कोर मैं पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ मैं राख निवाजिया, तिस स्यो प्रीत शाड अनराता, काहू सिरै ना लावना, तार अनुग्रह स्वामी मेरे, घट घट वसै सबन कै नेरे, हाथ मारे कछुऐ नाही, जिस जनाए तिसे जनावना, जां कै मस्तक तुर लिख पाया, तिसी पुरख ना व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरलैही कीने, ताकि कीमत कहन ना जाई, जत का तो ही समावना, सोई भगत सोई वरदाता, सोई पूर्ण पुरख विधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बदै कटै ना कटाए, सोई होए जे करते पावै, कह कह आप मजावना, अंध कूपते से ही काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहन न जाई, अचरज रूप वड्डी वड्याई, भगत दान मंगै जन तेरा, नानक बल बल जावना, मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक महला

बूढ़ोगे परवार सकल स्यों, राम न जपवा भागे रहाओ। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उत्तर सुपारा। जी बदो सो धर्म कर था पो, अधर्म कहो कत पाई, आपस कहो मनवर कर था पो, कागो कहो कसाई। मन के अंधे आपना बुझाओ, काहे बुझावो पाई, माया कारण विद्या बेचहो, जन्मा व्यर्था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सो को पूछो जाई, कह कबीर रामे राम छूटो, नाहे ता बूढ़े पाई, बने बसे क्यों पाई है, जो लो मने मनो नत जाय बेकार। जे कर बन समसर किया, ते पूरे संसार सार सुख पाई है रामा, रंग रवो आत्मा राम रहाओ। जटा भस्म लेपन किया, कहां गुफा मैं बास, मन जीते जग जीतिया, जाते बिख्या ते होए उदास। अंजन दे सबै कोई, टुक चाहन माहे बिढान, ज्ञान अंजन जे पाया ते लोइन परवान। कह कबीर अब जानिया, गुर ज्ञान दिया समझाए, अंतरगत हर पेटिया, अब मेरा मन कतहू ना जाए। रिद सिद जा को फुरी, तब कहू स्यों क्या काज, तेरे कहने की गत क्या कहो, मैं बोलत ही बड़ लाज। राम जे पाया राम, ते पवे न बार बार रहाओ, झूठा जग डह के कना, दिन दोए बर्तन की आस। राम उदक जेह जन पिया, ते बौर न पई प्यास, गुर प्रसाद जे बूझे आया, सा ते भया निरास। सब सच नदरी आया, जो आत्म भया उदास। राम नाम रस चाखिया, हर नामा हर तार, कहो कबीर कंचन पया, प्रम गया समुन्द्र पार। उदक समुन्द सलिल की साखिया, नदी तरंग समावेंगे, सुन्ने सुन मिलिया समदर्शी, पवन रूप होए जावेंगे। बहुर हम काहे आवेंगे, आमन जाना हुक्म तिसा का, हुक्मे बुझ समावेंगे रहाओ। जब चुके पंच तात की रचना, ऐसे परम चुकावेंगे, दर्शन छोड़ पे समदर्शी, एको नाम ते आवेंगे। जित हम लाए तिथि लागे, तैसे कर्म कमावेंगे, हर जी कृपा करे जाओ अपनी, तो गुर के शब्द समावेंगे। जीवत मरो मरो फिर जीवो, जीवत मरो मरो फुन जीवो, पुनरप जन्म ना होई, कहो कबीर जो नाम समाने, सुन रया लिख सोई। जाओ तुम को दूर करत हो, तो तुम मुक्त बतावो, एक अनेक होए रहो सगल में, अब कैसे परमावो। राम मोको तार कहां ले जई है, सो दो मुक्त कहां देव कैसी, कर प्रसाद मोहे पाई है रहाओ। तारन तरन तवे लग कही है, जब लग दत न जानिया, अब तो बिमल भय कट ही मैं, कह कबीर मन मानिया। जिन गढ़ कोट किए कंचन के, छोड़ गया सो रावन, काहे की जित है मन पावन। जब जब आए केस ते पकड़ तै, हर को नाम छडावन रहाओ। काल अकाल खसम का कीना, एहो परपंच बधावन, कहे कबीर ते अंते मुक्ते, जिन हृदय राम रसायन। देही गावा जियो तर महतो, बसे पंच किरसाना, नैनू नगटू श्रमनू रसपत, इंद्री कया नमाना। बाबा अब ना बसो ए गाओ, करी करी का लेखा मांगे, काहित चेतु नाओ रहाओ। धर्म राय जब लेखा मांगे, बाकी निकसी पारी, पंच किरसान वापा गए, ले बांधे ओ जियो दरबारी। कह कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को, बहोर ना पाओ जल फेरा। राग मारू बाणी कबीर जियो की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। अनपव किने ना देखिया बैरागी अड़े, बिन पै अनपव होए वना हम्बे, सहो हदूर देखे ता पव पवे बैरागी अड़े, हुक्मै बूझे ता निरपव होए वना हम्बे। हर पाखंड ना की जई बैरागी अड़े, पाखंड रता सब लोक वना हम्बे, तृष्णा पासना छोड़ई बैरागी अड़े, ममता जालिया पिंड वना हम्बे।
ਚਿੰਤਾ ਜਾਲ ਤਨ ਜਾਲਿਆ ਬੈਰਾਗੀ ਅੜੇ, ਜੇ ਮਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ ਵਣਾ ਹੰਬੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਹੋਵਈ ਬੈਰਾਗੀ ਅੜੇ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ ਵਣਾ ਹੰਬੈ, ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਬੈਰਾਗੀ ਅੜੇ, ਸਹਿਜੇ ਪਾਵੈ ਸੋਏ ਵਣਾ ਹੰਬੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰਕ ਬੇਨਤੀ ਬੈਰਾਗੀ ਅੜੇ, ਮੋਕੋ ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਵਣਾ ਹੰਬੈ, ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੈ, ਐਸੋ ਪਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹੇ ਪਾਵੈ ਰਹਾਓ। ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਪੂਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਮਰੋ ਦੁੱਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਨਿਆ, ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ, ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕਰ ਅੰਧ ਬਿਨੋਦੀ, ਜਾਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੀ। ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨੀਸਾ ਨੈ ਕਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ। ਕਬੀਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚਾਰ ਮੁਕਤ ਚਾਰੈ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੂਲੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਪਰਿਓ, ਮੁਕਤ ਭਇਓ ਚਹੁੰ ਜੁਗ ਜਾਣਿਓ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਤਰਿਓ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਬਤ ਕੋ ਨਾ ਤਰਿਓ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਭਗਤ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਰਹਾਓ। ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਬਰਾਇਤ, ਦੇਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਮ ਡਰਿਓ, ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਰਾਮ ਬਲ ਗਰਜਤ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਤਾਪ ਹਿਰਿਓ। ਅਮਰੀਕੋ ਦਿਓ ਅਪੈ ਪਦ, ਰਾਜ ਭੀਖਣ ਅਧਿਕ ਕਰਿਓ, ਨੌ ਨਿਧ ਠਾਕਰ ਦੇਈ ਸੁਦਾਮੈ, ਤਰੂ ਅਟਲ ਅਜਹੂ ਨਾ ਟਰਿਓ। ਭਗਤ ਹੇਤ ਮਾਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ, ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋਏ ਦੇਹ ਧਰਿਓ, ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਭਗਤ ਬਸ ਕੇਸਵ, ਅਜਹੂ ਬਲਕੇ ਦੁਆਰ ਖਰੋ। ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀਓ, ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਪੇਟ ਭਰਿਓ, ਪਸੂਆ ਜੋ ਸੋਇਓ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ ਰਹਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਰਚਿਓ ਤੰਦੈ ਝੂਠ, ਸਵਾਨ ਸੂਕਰ ਬਾਇਸ ਜਿਵੈ, ਭਟਕਤ ਚਾਲਿਓ ਊਠ। ਆਪਸ ਕਉ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਨੈ, ਔਰਨ ਕਉ ਲਗ ਮਾਤ, ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਦੁਜਗ ਜਾਤ। ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਚਾਤਰੀ, ਬਾਜੀ ਗਰਬੇ ਕਾਮ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਸਿਮਰਿਓ ਰਾਮ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚੇਤੈ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖ ਮੁਕਤ ਗਵਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਉੱਤਰ ਸਪਾਰ। ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਜੈ ਦਿਓ ਜੀਓ ਕੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੰਦ ਸਤ ਭੇਦਿਆ, ਨਾਦ ਸਤ ਪੂਰਿਆ, ਸੂਰ ਸਤ ਖੋੜਸਾ ਦੱਤ ਕੀਆ, ਅਬਲ ਬਲ ਤੋੜਿਆ, ਅਚਲ ਚਲ ਥਪਿਆ, ਅਘੜ ਘੜਿਆ, ਤਹਾਂ ਅਪਿਓ ਪੀਆ, ਮਨ ਆਦ ਗੁਣ ਆਦ ਵਖਾਣਿਆ, ਤੇਰੀ ਦੁਬਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮਾਨਿਆ ਰਹਾਓ। ਅਰਧ ਕਉ ਅਰਧਿਆ, ਸਰਧ ਕਉ ਸਰਧਿਆ, ਸਲਲ ਕਉ ਸਲਲ ਸਮਾਨ ਆਇਆ, ਬਦਤ ਜੈ ਦੇਉ ਜੈ ਦੇਵ ਕਉ ਰਮਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਵਾਣ ਲਿਵਲੀਣ ਪਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਮਾਰੂ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇ।

संत संगत जन सुनो पाई गुरमुखर सेवा सफल बनी तू जल थल महियल भरपूर सब उपर साई तनी तू थां थनंतर हर एक हर एको एक रविया वन त्रिण त्रिपवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया सब चवै हर हर नाम करते असंख गणत हर त्यावै सो धन धन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावै सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हिरदय नाम सद चवया तू थां थनंतर हर एक हर एको एक रविया तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवै मेरे स्वामी तिस मिलै जिसकै मस्तक हाथ जिसकै मस्तक गुर हाथ तिस हिरदय हर गुण टिकै हर गुण हिरदय टिकै तिसकै जिस अंतर पौ पावनी होई बिन पै कने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई पाओ पाओ प्रीत नानक तसै लागै जिस तू अपनी कृपा करै तेरी भगत भंडारा संख जिस तू देवै मेरे स्वामी तिस मिलै तुखारी महला चौथा नावन पुरबा बीच गुर सतगुर दर्श पाया दुरमत महल हरी अज्ञान अंधेर गया गुरदर्श पाया ज्ञान गवाया अंतर ज्योत प्रगासी जन्म मरण दुखिन में बिरसे हर पाया प्रभव नासी हर आप करते पुरब किया सतगुरु कुल खेत नावन गया नावन पुरबा बीच गुर सतगुर दर्श पाया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अंदर भगत बनी खिन खिन निमख वेखा हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया जिन दर्श सतगुर गुरु किया तिन आप हर मेल आया तीर्थ उद्यम सतगुरु किया सब लोक उदर निर्था मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब होवा खबर पई संसार आए त्रैलोवा देखने आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नास गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी खट दर्शन कर गए गोष्ठ ढोवा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब होवा दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया जागाती मिले दे भेट गुर पिछे लंगाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम ते आया गुरबचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागाती ने ना आया सब गुरु गुरु जगत बोले गुर कै नाए लया सब छुटक गया दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत पया सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड ना दाम लया आड दाम किश पया ना बोलक जा गातिया मोहन मुंदन पई भाई हम करै क्या किस पास मांगै सब भाग सतगुर पिछे पई जा गातिया उपाव सियाणप कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत पया मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर उठ गही गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ते आया देही नगर कोट पंच चोर वटवारे तनका था उथे हो गवाया कीर्तन पुराण नित पुन होवै गुर बचन नानक हर भगत लही मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही तुखारी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोल कुमाई ललना गुरमन दीना सुन सब तुम्हारा मेरा मन पीना एहो मन पीना ज्यों जलमीना लगा रंग मुरारा।

सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनहो एक दीना, देहो दर्श नानक बलिहारी जियड़ा बल बल कीना। एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे, खनिए वन्या दर्शन तेरे, दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे, निमख दृष्ट पेख जीवा, अमृत नाम सुनी जय तेरा, कृपा करै ता पीवा। आस प्यासी पर कह ताई, जो चात्रक बूंदे रे, कहो नानक जियड़ा बलिहारी देहो दर्श प्रभ मेरे। तू साचा साहेब साहो अमिता, तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता, प्राण सुखदाता गुरुख जाता, सल रंग बन आए, सोई कर्म कमावे प्राणी, जेहा तू फुरमाए, जाको कृपा करी जगदीशर, तिन साध संग मन जिता। कहो नानक जियड़ा बलिहारी, जियो पिंड तो दिता, निर्गुण राख लिया, संतन का सदका, सदगुरु ढाग लिया, मोहे पापी पड़दा, ढाकन हारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते, अवनासी अवगत स्वामी, पूर्ण पुरख बेदाते। उस्तत कहन ना जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का, नानक दासता कह बलिहारी, मिले नाम हर निमका। केदारा महला चौथा, घर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मेरे मन, राम नाम नित गावी है रे, आगमा गोचर ना जाई हर लखिया, गुरपुरा मिले लखावी है रे, रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिवलावी है रे, सब को भगत करे हर केरी, हर पावे सो थाए पावी है रे, हर हर नाम अमोलक हर पह, हर देवै ता नाम ते आवी है रे, जिसनो नाम दे मेरा स्वामी, तिस लेखा सब छुड़ावी है रे, हर नाम आराध है ऐसे धन जन कही है, तिन मस्तक भाग तुर लिख पावी है रे, तिन देखे मेरा मन बिकसै, जो सुत मिल मात गल लावी है रे, हम बार कहर पिता प्रभ मेरे, मोको देहो मत्ती जित हर पावी है रे, ज्यो बछरा देख गऊ सुख मान, त्यो नानक हर गल लावी है रे। केदारा महला चौथा, घर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मेरे मन, हर हर गुण कहो रे, सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो, इन बिद मेरा हर प्रभ लहो रे, रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अवमान, बिखै रस इन संगत ते तू रहो रे, मिल सत संगत कीजै हर गोष्ट, साधु स्यों गोष्ट, हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमहो रे, अंतर काय अभिमान जोर तू, किश किश किश जानता, एहो दूर करो अपन गहो रे, जन नानक कहो हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की तूर कर हरे। केदारा महला पंजवां, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद माई संत संग जागी, प्रे रंग देखै जपती नाम निधानी, रहाओ दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बिसरी त्यास बेडानी, अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी, देखत मोदर रहस मन उपजियो, नानक प्रे अमृत बानी। केदारा महला पंजवां, घर तीजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद दीन बिना सुन दयाल, पंच दास तीन दोखी, एक मन अनाथ नाथ, राखो कृपाल, रहाओ अनक जतन गमन करो, खट कर्म जुगत ध्यान धरो, उपाव सगल कर हारो, नय नय हुटै बिकराल, शरण बंदन करना पते, पाव हरण हर हर हर हरे।
एक तू ही दीन दयाल प्रभ चरण नानक आसरो उदरे परम मोह सागर लग संतना पग पाल। केदारा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सरनी आयो नाथ निदान नाम प्रीत लागी मन पीतर मांगन कौ हरदान। रहाओ सुखदाई पूर्ण परमेश्वर कर कृपा राखो मान। देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान। गोपाल दयाल गोविंद दमोदर निर्मल कथा ज्ञान। नानक कौ हर कै रंग रंग चरण कमल संग ध्यान। केदारा महला पंजवा हर के दर्शन को मन चाओ कर कृपा सत्संग मिलावो तुम देवो अपनो नाओ। रहाओ करो सेवा सतपुरख प्यारे जत सुनिए तत मन रहसाओ। वारी फेरी सदा कुमाई कमन अनूप तेरो ठाओ। सर्व प्रतपालय सगल संभालय सगलिया तेरी छाओ। नानक के प्रपुरख विदाते घट घट तुझै दिखाओ। केदारा महला पंजवा प्रेकी प्रीत प्यारी मगर मनै मैं चितवो वासा नैनो तार तुहारी। रहाओ ओए दिन पहर मूर्त पल कैसे ओए पल करी किहारी। खूले कपटो तबट बुझ तृष्णा जीवो पेख दरसारी। कौन सो जतन ओ पाओ कनेहा सेवा कौन बिचारी। मान अवमान मोह तज नानक संतै संग उदारी। केदारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोबिंदे अपना नाम जपावो। रहाओ काड लिए प्रभयान बिखैते सा संग मन लावो। भ्रम पौ मोह कट्यो गुरबचनी अपना दर्श दिखावो। सब की रेन होए मन मेरा अहम बुद्ध तजावो अपनी भगत देह दया लावड़ भागी नानक हर पावो। केदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकार्थ जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात। रहाओ तन जोबन संपै सुख पुगवै संग ना निभत मात। मृग तृष्णा देख रचियो बावर द्रुम छाया रंग रात। मान मोह महामद मोहत काम क्रोध कै खात। कर गै लेहो दास नानक कहो प्रभ जियो होए सहात। केदारा महला पंजवा हर बिन कोई न चालस साथ दीना नाथ करना पत स्वामी अनाथा के नाथ। रहाओ सुत संपत बिखिया रस भुगवत नह निबहत जम कै पाथ। नाम निधान गाओ गुण गोबिंद उदर सागर के खात। सरण समरथ या काथया गोचर हर सिमरत दुखलाथ। नानक दीन तूर जन बांशत मिलै लिखत तुरमाथ। केदारा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बिसरत नाहे मन ते हरी अब एह प्रीत महाप्रबल पई आन बिखै जरी। रहाओ बूंद कहां त्याग चात्रक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उचार रसना टेव एह परी। महानाद कुरंक मोहयो बेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गाठ बांध तरी। केदारा महला पंजवा प्रीतम बस्त रिद मैं खोर परम पीत निवार ठाकर गह लेहो अपनी ओर। रहाओ अदक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोयथ उदर ते लै मोर। गर्भ कुंट मैं जिनै तारियो नहीं बिखै मन मैं होर। हर सकत सरन समरथ नानक आन नहीं निहोर। केदारा महला पंजवा रसना राम राम बखान गुण गोपाल चार दिन रैन पय कलमलहान। रहाओ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर परमान।
ਸਤ ਪੁਰਖਿਆ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੈ ਤਾਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਲਾਭ ਨਾਨਕ ਬਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਆਧਾਰ ਕਲ ਕਲੇਸ ਨਾ ਕਛ ਵਿਆਪੈ ਸੰਤ ਸੰਗ ਵਿਵਹਾਰ ਰਹਾਉ ਕਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਆਪ ਰਾਖਿਓ ਨੈ ਉਪਜਤੋ ਬੇਕਾਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸ ਦਹਿਤ ਨੈ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲ ਆਨੰਦ ਹਰ ਜਸ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਆਨੰਦ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਨਾਗਤੀ ਤੇਰੇ ਸੰਤਨਾ ਕੀ ਸ਼ਾਰ ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੋਤ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਵਿਸਾਰ ਜੀਵੈ ਤਿਹ ਕਤ ਜੀਵਨ ਹੋਤ ਰਹਾਉ ਖਾਤ ਪੀਤ ਅਨੇਕ ਬਿੰਜਨ ਜੈਸੇ ਭਾਰ ਬਹਕ ਖੋਤ ਆਠ ਪਹਿਰ ਮਹਾਸ੍ਰਮ ਪਾਇਆ ਜੈਸੇ ਬਿਰਖ ਜੰਤੀ ਜੋਤ ਤਜ ਗੋਪਾਲ ਜੇ ਆਨ ਲਾਗੇ ਸੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਰੋਤ ਕਰ ਜੋਰ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਹਰ ਰੱਖੋ ਕੰਠ ਪਰੋਤ ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤੈ ਧੂਰ ਲੇ ਮੁਖ ਮਲੀ ਗੁਣਾ ਅਚਿਤ ਸਦਾ ਪੂਰਨ ਨੈ ਦੁਖ ਵਿਆਪੈ ਕਲੀ ਰਹਾਉ ਗੁਰਬਚਨ ਕਾਰਜ ਸਰਵ ਪੂਰਨ ਈਤ ਊਤ ਨਾ ਹਲੀ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਅਨਕ ਸਰਬੱਤ ਪੂਰਨ ਦਿਖੈ ਅਗੰਨਾ ਜਲੀ ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨੋ ਦਾਸ ਅਪਨੋ ਜੋਤ ਜੋਤੀ ਰਲੀ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਸਰਨ ਅਨਾਥ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਚੱਲੀ ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਰੁਚੈ ਕੋਟ ਸਾਂਤ ਆਨੰਦ ਪੂਰਨ ਜਲਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੁਝੈ ਰਹਾਉ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਪਤਤ ਉਧਰੈ ਮੁਚੈ ਰੇਣ ਜਨਕੀ ਲੱਗੀ ਮਸਤਕ ਅਨਕ ਤੀਰਥ ਸੁਚੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਧਿਆਨ ਪੀਤਰ ਕੜਕਟੈ ਸਵਾਮੀ ਸੁਜੈ ਸਰਨ ਦੇਵਿਆ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਬਹੁਰ ਜਮ ਨਹੀਂ ਲੁਜੈ ਕੇਦਾਰਾ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ ਰਹਾਉ ਪੂਰ ਰਹਾ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਸੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਹਰ ਕੀਆ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਡਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਜੋ ਸਰਨੀ ਆਵੈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪੰਨੈ ਕਹਲਿਆ ਹਰ ਗੁਣਿਤ ਗਾਏ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਨ ਬੇਦਿਆ ਸੇ ਆਨ ਕਤ ਜਾਹੀ ਮੀਨ ਬਿਸ਼ੋਹਾ ਨਾ ਸਹੈ ਜਲ ਬਿਨ ਮਰ ਪਾਹੀ ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਉ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਖ ਕਿਨ ਸਹੀ ਹੈ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੂੰਦ ਪਿਆਸਿਆ ਕਬਰੈਨ ਬਿਹਾਵੈ ਚੱਕਵੀ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸੂਰਜ ਕਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਹਰ ਦਰਸ ਮਨ ਲਾਗਾ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗਾ ਅੰਦਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਹੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ ਕਤ ਹਰ ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕਾਹੀ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਰੀ ਕਤ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ ਦਰਸ ਬਿਹੁਨਾ ਸਾਧ ਜਾਨੋ ਖਿੰਡ ਟਿਕਣ ਨਾ ਆਵੈ ਹਰ ਬਿਨ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਨਰਕ ਸੋ ਸਹਿਣਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਹਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਗੀ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਏ ਨਖੇਦਿਆ ਹਰ ਸਿਉ ਜਾਏ ਮਿਲਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਸੋ ਸੁਖਅੰਕ ਨਾਮ ਆਵੈ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਨਾਨਕੇ ਸਵਾਮੀ ਹਰ ਚਰਨੈ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਹਰ ਕਰਨਾ ਧਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨੀਚਾ ਨਾਥ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਬਿਰਧ ਬਖਾਨਿਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਸੁਨ ਅੰਚਲੋ ਗਹਿਆ ਘਟ ਘਟ ਪੁਰ ਸਮਾਨਿਆ ਸੁਖ ਸਾਗਰੋ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੁਭਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹਾਰੇ ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰੇ ਰਾਗ ਕੇ ਦਾਰਾ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਬਿਬਰਜਤ ਤਜੋ ਮਾਨ ਅਭਮਾਨਾ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਸਮ ਕਰ ਜਾਨੈ ਤੇ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨਾ ਤੇਰਾ ਜਾਨੂ ਏਕ ਯਾਦ ਕੋਈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਮੋ

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पहरो महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब को लो धारण हार। बिन नावे मन

सगल पराध देहे लोरोनी सो मुख जलो जित कह है ठाकर जोनी। जन्म ना मरे न आवे न जाए नानक का प्रभरे उसमाए। पैरव महला पंजवा उठत सुखिया बैठत सुखिया पौ नहीं लागे जा ऐसे बुझिया। और आखा एक हमारा स्वामी सगल घटा का अंतर जामी रहाओ। सोए अचिंता जागया चिंता जहां कहां प्रभ तू वर्तनता। घर सुख वसया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। पैरव महला पंजवा वर्त ना रहो ना महरम दाना ते सेवी जो रखे निदाना। ए गोसाई अल्लाह मेरा हिंदू तुर्क दुहाने बेरा। रहाओ हज काबे जाओ ना तीर्थ पूजा एको सेवी अवर ना दूजा। पूजा करो ना निवाज गुजारो एक निरंकार लेर दे नमस्कारो। ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण। कहो कबीर एहो किया वखाना गुर पीर मिल खुद पछाना। पैरो महला पंजवा दस मिर्गी सहजे बंदयानी पांच मिर्ग बेदे सेवकी बानी। संत संग ले चढ़ियो शिकार मृग पकड़े बिन कोर हथियार। रहाओ अखेर बिरत बाहरे आयो ताए अहेरा पायो करके गाए। मृग पकड़े कर आने हाट चुख चुख ले गए बांडे बाट। एहो अहेरा की नो दान नानक कह कर केवल नाम। पैरव महला पंजवा जे सौ लोच लोच खावाया सागत हर हर चीत ना आया। संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गते। रहाओ पाथर को बहु नीर पवाया नह पी गए अधिक सुकाया। खट शास्त्र मूर्ख है सुनाया जैसे दैदिस पवन चुलाया। बिन कण खलहान जैसे गहना पाया त्यों साकत ते को ना बरासाया। तित ही लागा जित को लाया कहो नानक प्रबणत बनाया। पैरो महला पंजवा जियो प्राण जिन रचियो शरीर जनायो पाए तिसको पीर। गुरु गोबिंद जी कै काम हलत पलत जाकी सद शाम। रहाओ प्रभ आराधन निर्मल दीत साध संग बिनसी विपरीत। मीत हीत तन नह पारना तन तन मेरे नारायणा। नानक बोले अमृत बाणी एक बिना दूजा नहीं जानी। पैरो महला पंजवा आगे दय पाछे नारायण मध पाग हर प्रेम रसायण। प्रभु हमारे शास्त्र साउण सुख सहजानंद ग्रह पाउण। रहाओ रसना नाम करन सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे। जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे। कर कृपा प्रभ लिए मिलाए नानक प्रभ शरणागत आए। पैरव महला पंजवा कोट मनोरथ आवे हाथ जब मार कै संगी पांथ। गंगा जल गुर गोबिंद नाम जो सिमरै तिसकी गत होवै। पीवत बहुड़ना जोन प्रमाम। रहाओ पूजा जाप ताप इशनान सिमरत नाम पै निहकाम। राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूर्ण आचार। नानक दास एहो किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सबसार। पैरव महला पंजवा लेप न लागो तिल का मूल दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल। हर जन राखे पार ब्रह्म आप पापी मुआ गुर प्रताप। रहाओ अपना खसम जन आप ते आया याना पापी ओ आप चाया। प्रभ मात पिता अपने दास का रखवाला।

ना बिना सब दुनिया शार, अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपने खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण, पहरो महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाणा सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवो, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मै कनाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सतगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पहरो महला पंजवा, अपने दास को कंठ लगावे, निंदक अगन में पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथु नाही, पापी पचिया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए ना जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे, जो चितवी है तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करै ते निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, सागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पै सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया, पैरों महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, ग्रह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारे पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊप पयाल सर मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासा पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपी तपी सर मन मैं

कर्तार, जैसी ऊपर नजर करे करतार, तेह जन के सब का इसवार, तिसका रखा एक को सोए, जन नानक पढ़ ना सके कोए। पैरो महला पंजवा, तौकड़िया जे होवे बाहर, तौकड़िया जे विसरै नरहर, तौकड़िया जे दूजा पाए, क्या कड़िया जा रहा समाए। माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ। तौकड़िया जे दूजा करता, तौकड़िया जे अन्याय को मरता, तौकड़िया जे कह जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही। तौकड़िया जे किश होए तिंगाण, तौकड़िया जे भूल रजाण, गुर कहया जो होए सब प्रभ ते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते। प्रभ तू है ठाकर सब को तेरा, जो पावे त्यों करे निबेरा। दुतिया नास्त एक रया समाए, राखो पैज नानक सरनाए। पैरो महला पंजवा, बिन बाजे कैसो निर्तकारी, बिन कंठ कैसे गवनहारी, जील बिना कैसे बजर बाप, नाम बिना बिरथे सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ। बिन जेहवा कहाँ को बगता, बिन श्रवना कहाँ को सुनता, बिन नेत्रा कहाँ को पेख, नाम बिना नर कहीं ना लिख। बिन विद्या कहाँ कोई पंडित, बिन अमरा कैसे राज मंडित, बिन बुझे कहाँ मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी, बिन बस पंच कहाँ मन चूरे, नाम बिना ससद ही चूरे। बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कखनी सर्व बेकार, कहो नानक दर का विचार। पैरो महला पंजवा, हम मैं रोग मानख कौ दीना, काम रोग मैंगल बस लीना, दृष्ट रोग पचमोए पतंगा, नाद रोग खप गए कोरंगा। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी रहाओ। जेहवा रोग मीन ग्रस यानो, बासन रोग पवर बिनसानो। हेत रोग का सगल संसारा, त्रिबद रोग मैं बदे बिकारा। रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी परमे। रोग बंद रहन रति ना पावे, बिन सतगुर रोग कतै ना जावे। पार ब्रह्म जिसकीनी दया, बहां पकड़ रोगों कढ लया। टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया। पैरो महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख पंज, चीत आवे ता सरदा पूरी, चीत आवे ता कबे ना चूरी। अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरे दियो रंग लाए रहाओ। चीत आवे ता सर्ब को राजा, चीत आवे ता पूरे काजा, चीत आवे ता रंग गुलाल, चीत आवे ता स्था निहाल। चीत आवे ता सद धनवंता, चीत आवे ता सद निपरंता, चीत आवे ता सब रंग माणे, चीत आवे ता चुकी काणे। चीत आवे ता सहज कर पाया, चीत आवे ता सुन समाया, चीत आवे सद कीर्तन करता, मन मान्या नानक भगवंता। पैरो महला पंजवा, बाप हमारा सद चिरंगजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा बनासी, कुटुंब हमारा नहीं करवासी। हम सुख पाया ता सवै सुहेले, गुरपुरे पिता संग मेले रहाओ। मंदिर मेरे सब ते उच्चे, देश मेरे बेअंता पूछे, राज हमारा सदी निचल, माल हमारा खूटा बेचल। सोभा मेरी सब जुगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर,
कीर्त हमरी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे मांझ, पिता पुत्रल किन्नी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूते कै रंग लीने, पहरो महला पंजवा। निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हम अपराधी तुम बख्साते। जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई। सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु ते आए रहाओ। पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश। चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना के राया। तिस पाणा सूके काष्ट हरिया, तिस पाणा ता थल सिर सरिया। तिस पाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए। हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन शीतल मन अमृत बूठा। पार ब्रह्म गुर पय दयाला, नानक दास देख पय निहाला। पहरो महला पंजवा, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सबसका दाता, सतगुर मेरा पुरख बिदाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सो लागा सेव रहाओ। सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है, सतगुर मेरे की वड़ियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीबाण, सतगुर कह सतबल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेव्या तिस पौ ना ब्यापै, जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पैरो महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट पया, नाम लैत पाप तंते गया। नाम लैत सगल पुरबाया, नाम लैत अठ सठ मजनाया। तीर्थ हमरा हर को नाम, गुरु उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अतमूढ़ सुगयाना। नाम लैत प्रगट उजियारा, नाम लैत छुट्टे जंजारा। नाम लैत जम नेड़ ना आवै, नाम लैत दरगह सुख पावै। नाम लैत प्रभ कह सबास, नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश कयो एहो सार, हर कीर्त मन नाम आधार। नानक उधरे नाम पुनै चार, अवर कर्म लोकै पतियार। पैरो महला पंजवा, नमस्कार ता कौ लख बार, एहो मन दीजै ता कौ वार। सिमरन ता कै मिटै संताप, होए आनंद ना व्यापै ताप। ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूर्ण सब काम रहाओ। जा की दृष्ट दुखडेरा टह, अमृत नाम शीतल मन गह। अनक भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण हारी। खिन मैं ऊने सुबर भरिया, खिन मैं सूके कीने हरिया। खिन मैं नथावे कौ दीनो थान, खिन मैं निमाणे कौ दीनो मान। सब मैं एक रहा पर पूरा, सो जापै जे सतगुर पूरा। हर कीर्तन ताको आधार, कहो नानक जिस आप दयार। पैरो महला पंजवा, मोहे दुहागन आप सिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी। मिट्यो दुखर सगल संताप, गुर होए मेरी माई बाप। सखी सहेरी मेरा ग्रस्तया नंद, कर कृपा पेटे मोहे कंत रहाओ। तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटया देर पय प्रगासा। अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुरपूरा पूरा प्रसाद। जा कौ प्रगट पय गोपाल, ता कै दर्शन उसदा निहाल। सर्ब गुणा ता कै बहुत निदान, जा को सतगुर दियो नाम।
ਜਾਂ ਕਉ ਭੇਟਿਓ ਠਾਕੁਰੇ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੇਨ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ। ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ ਨਾ ਆਲ ਕੇ ਆਵੈ, ਬੇਸਵਾ ਭਜਤ ਕਿਸ਼ਨੈ ਸਰਮਾਵੈ। ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਸਮਜੂਰੀ ਕਰੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਬੱਜਰ ਸਿਰ ਪਰੈ। ਮਾਇਆ ਲਗ ਭੁੱਲੋ ਸੰਸਾਰ, ਵਾ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਲਾਵਣ ਹਾਰੈ। ਰਾਹ ਚ ਰਹਿਆ ਬਿਰਥਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਰਹਾਓ ਪੇਖਤ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਿਹਾਏ। ਗੜਬੜ ਕਰੈ ਕੌਡੀ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਅੰਧ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਦ ਮੰਤ ਆਵੈ। ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਵੈ, ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵ ਹੀ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨਾ ਕਾਰਜ ਮਾਇਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਤੜਫ ਮੂਆ ਜਿਉਂ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ, ਜਿਸਕੇ ਰਾਖੇ ਹੋਏ ਹਰ ਆਪ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪ ਜਾਪ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੀ ਕੋ ਆਧਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪੋ ਨਿਤ ਭਾਈ। ਤਾਰ ਲਏ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ, ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ। ਸਹਿਜ ਅੰਦਰ ਗੈ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਅਗੈ ਮਿਲੈ ਨਿਥਾਵੇ ਥਾਓ, ਜੁਗੈ ਜੁਗੰਤਰ ਇਹੋ ਤਤ ਸਾਰ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਲੜ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੈ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਭਗਤਨ ਕਾ ਆਪ। ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪੇ ਜਾਪ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹਾਥ। ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦੀ ਸਾਥ, ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਆਵੈ ਕਾਮੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਵਿਆ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਮੇਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਅਗਮਿਆ ਮੋਲਾ।

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन में लय दीन दयाल सदा कृपाल बिरस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यों लागो हेत खिर मैं बिरस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रखनहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक उसदा प्रतपार है पगजना के सास निहार है मानस की कहो केतक बात जमते राख दे कर हाथ निर्मल शोभा निर्मल दीत पार ब्रह्म आया मन चीत कर कृपा गुरदीनो दान नानक पाया नाम निदान भैरव महला पंजवां करण कारण समर्थ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै पंजन अबनासी राए दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखो तेरी सरना बल बल जाई सतगुर चरना रहाओ पूर्ण काम मिले गुरदेव सफल दाता निर्मल सेव कर गहलीने अपने दास राम नाम रिद्धियो निवास सदा आनंद नाही के सोग दुख दर्द न व्यापै रोग सब किश तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुर अगम अपार निर्मल सोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रविया सोए नानक सब किश प्रभ ते होए पैरव महला पंजवां मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूर्ण करने आठ पहर गावत भगवंत सतगुर दीनो पूरा मंत सो वड भागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरह संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरै एक सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी सो पतवंता जे आप पिछानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रहन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण रिदमाहे निवासा कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा सो जन आया प्रभ की सरना आप पवित पावन सब कीने राम रसायन रसना चीने भैरो महला पंजवा नाम लै तो किश बिघ ना लागे नाम सुन तो जम दूरों भागे नाम लै तो सब दुख नास नाम जपत हर चरण निवास निर्विघ्न भगत भज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ हर सिमरत किस चाख ना जो है हर सिमरत दैत देव ना पुहै हर सिमरत मोह मान ना बदै हर सिमरत गर्भ जो ना रुदै हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बहु माया अकेला जात अजात जपै जन कोए जो जपै तिसकी गत होए हर का नाम जपिए साध संग हर के नाम का पूर्ण रंग नानक कहो प्रभ कृपा तार सा सा सर देहो चितार पैरो महला पंजवां आपे सास्ते आपे भेद आपे कटकट जाने भेद ज्योत स्वरूप जाकी सब वत करण कारण पूर्ण समरथ प्रभ की ओट गहो मन मेरे चरण कमल गुरमुखिया राधाओ दुश्मन दुख न आवे नेरे रहाओ आपे वन त्रिण त्रि पवन सार जाकै सूत प्रोया संसार आपे शिव शक्ति संजोगी आप निर्बाणी आपे भोगी जत कत पेखो तत तत सोए तिस बिन दूजा नाही कोए सागर तरिए नाम कै रंग गुण गावै नानक साध संग
ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਵਸ ਜਾ ਕੈ ਊਣਾ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਜਨਤਾ ਕੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਹੀ ਜਨ ਧਨ ਪਹਿਰਾਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਅਸਥਿਤ ਭਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਚਿੰਦ ਭੈ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨਸ ਗਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ ਰਹਾਓ ਧਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਜੁਗਤ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਥ ਨਿਮਖ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥ ਹਰ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਸਰ ਸਮਾਲੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਬੰਧ ਨਰਾਇਣ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਤਿਸ ਕੀ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮਨ ਜੋਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਪ੍ਰਖਾਰਥ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥ ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪੜਿਆ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਮਿਟੀ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਕੀ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਰਹਾਓ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਿਨਕੋ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ ਜਨ ਕਾ ਦਰਸ ਬਾਂਛੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਾਮ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਨਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਵੈਸੇ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ

नाव मेरे बंद पो नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सखाई। माया मैं जिस रखे उदास, कह कबीर हों ता को दास। नंगे आवन नंगे जाना, कोई न रह है राजा राना। राम राजा नौनद मेरा, संपै हेत कला तो तन तेरा रहाओ। आवत संग न जा संगाती, कहा पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे कबीर किश गुण बिचार, चले दुवारी चले जुआरी दो हथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद। मैला मलता है हो संसार, एक हर निर्मल जा कांत ना पार। रहाओ मैले ब्रह्मंडा एक ईस, मैले निस्बा सिर जंतीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पौन पाव क्यार नीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साध क्यार पेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत। कहे कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जोरा मैं जान। मन कर मक्का किबला कर देही, बोलनहार परम गुर यही। कहरे मुल्ला बाग निवाज, एक मसीत दसै दरवाज। रहाओ मिसमिल तामस परम कदूरी, पाखले पंचै हुए सबूरी। हिंदू तुर्क का साहिब एक, कह करे मुल्ला कह करे शेख। कह कबीर हाँ पया दीवाना, मुस मुस मनुमा सही समाना। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुई निबरी।

सो सुरतान जो दोए सरतान है, बाहर जाता पीतर यान है, गगन मंडल में लश्कर करे, सो सुरतान शत्र सर तरे, जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उचरे, मुसलमान का एक खुदाए, कबीर का स्वामी रया सुमाए, महल्ला पंजवा। जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसे, जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए, ठाकर हमरा सद बोलंता सर्ब जिया को प्रावधान देता रहा, अंतर देव न जान अंध भ्रम का मोहया पावे फंद, ना पाथर बोले ना किश दे फोकट कर्म ने फल है सेव, जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कौन फल पावे, जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई, कहत कबीर हाँ कहो पुकार समझ देख सकत गावार, दूजे पाए बहुत कर गाले राम भक्त है सदा सुखाले, जल में मीन माया के बेदे दीपक पता।

डकाई रहाओ पंखी मृग माया मैराते साकरमाखी अधिक संतापे तुरे उष्ट माया मैं पेला सिद्ध चौरासी माया मैं खेला छे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरजर चंदा तपे रखीसर माया मैं सूता माया मैं काल यार पंच दूता स्वान स्याल माया मैं राता बंतर जीते अर सिंघाता मांजार गाडर अर लुबरा बिरख मूल माया मैं परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा यार तार तेव कह कबीर जिस उधर तिस माया तब छूटे जब साधु पाया जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभु का सवार आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर कीना सिमरो दुख भंजना रहाओ जब लग सिंह रह बन माहे तब लग बन फूल ही नाहे जब ही स्यार सिंह को खाए फूल रही सगली बन राय जीतो बूढ़े हार उतरे गुर प्रसादी पार उतरे दास कबीर कह समझाए केवल राम रहो लिवलाए सत्तर सह सलाह रह जाके सवा लाख पै काम्बरता के सेख जो कही है कोट अठासी छप्पन कोट जाके खेल खासी मो गरीब की को गुजरावे मंजर सदूर महल को पावे रहाओ तेतीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिर दीवाना बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई उन पी पिस्त कनेरी पाई दिल खल हल जाके जर्द रूबानी छोड़क तेब करे सैतानी दुनिया दोस रोस है लोई अपना किया पावे सोई तुम दाते हम सदा पिखारी दियो जवाब होए बजगारी दास कबीर तेरी पने समाना पिस्त नजीक राख रह माना सब कोई चलन कहत है उहां ना जानो बैकुंठ है कहां रहाओ आप आपका मर्म ना जाना बात नहीं बैकुंठ बखाना जब लग मान बैकुंठ की आस तब लग नाही चरण निवास खाई कोट ना परलप गारा ना जानो बैकुंठ द्वारा कह कमीर अब कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे क्यों लीजे गढ़बंका पाई दोवर कोटियार तेवर खाई रहाओ पांच पचीस मोह मद मत सर आडी प्रबल माया जन गरीब को जोर ना पहुंचे कहां करो रगराया काम केवारी दुख सुख दरवानी पापुन दरवाजा क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर तै मनमावासी राजा स्वाद स्नाहा टोप ममता को कबुद कमान चढ़ाई तसना तीर रहे गढ़ पीतर इं गढ़ लियो न जाई प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन सहजे परजाली एक चुट सजाया सत संतोख लै लरने लागा तोरे दो दरवाजा साध संगत गुर की कृपा ते पकड़ो गढ़ को राजा भगवत पीर सगत सिमरन की कटी काल पै फांसी दास कमीर चढ़ियो गढ़ी उपर राज लियो अबनासी गंग गुसायन गहर गंभीर जंजीर बांध कर करे कबीर मन ना डिगे तन काहे कौ डराए चरण कमल चित रहे समाए रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर कह कबीर को संग ना साथ जल थल रखन है रघुनाथ पहराओ कबीर जी अष्टपति कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम दुर्गम गढ़ रचियो बास जमे जोत करे प्रगास बिजली चमके होया आनंद जे पौड़े प्रभ बाल गोबिंद एहो जियो राम नाम लिव लागे जरा मरण छूटे परम भागे रहाओ अबरन बरन स्यो मन ही प्रीत हम मैं गावन गावे गीत अनहद शब्द होत चुनकार जे पौड़े प्रभ श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रया शांति त्रे खंडा आगम्या गोचर रहया अभ्यंत पार ना पावे को तरनी तरमंत
कदली पोहप तू प्रगास, राज्य पंकज मैं लियो निवास। द्वादश दाल अभय अंतरमंत, जय पौड़े श्री कमलाकंत। अर्ध उर्द मुख लागो कास, सुन मंडल मैं कर प्रगास। उहां सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद। सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर स्नान। सो हंस सो जा को है जाप, जा को लिप्त न होए पुण्य अर पाप। अबर्ण बर्ण काम नहीं शाम, अवर न पाइय गुर की साम। तारी न टरे आवे न जाए, सुन सहज मै रहो समाए। मन मध्य जाने जे कोए, जो बोले सो आपे होए। जोत मंत्र माने असर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे। कोट सूर जा कै प्रगास, कोट महादेव अर कबलास। दुर्गा कोट जा कै मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम। राहो कोट चंद्र में करे चराक, सुरत तीसो जे वै पाक। नाम ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जा कै प्रतहार। कवन पवन कोट चौ बारे फिरे, बास कोट सेज बिस्थर। समुंद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोटा ठारे पार। कोट कमेर पर पंडार, कोट क लक्ष्मी करे सिंगार। कोट क पापन बहरे, इंद्र कोट जाके सेवा करे। छप्पन कोट जाके प्रतहार, नगरी नगरी ख्यात्या पार। लट छुट्टी वरते बिकराल।

नाम। असंख कोटियन पूजा करी, एक ना पूजस नामे हरि। प्रणवै नाम देओ एहो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरि, ताके निकट बसै नर हरि। जो ना भजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनके पितर है अंतरा, जैसे पस तैसे होए नरा। प्रणवत नाम देव ना कै बिना, ना सोहै बत्तीस लखना। दूध कटोरै गड़वै पानी, कपल गाए नामै दुहयानी। दूध पियो गोबिंदे राए, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हरिया गै तरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रच ता कहो करो सिंगार। भले निंदाओ भले निंदाओ भले निंदाओ लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहूं स्यो ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू पूर्ण चने बनावै, ज्यों राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ। कबहू तुरे तरंग नचावै, कबहू पाए पनियो ना पावै। कबहू खाट सुपेदी सुवावै, कबहू भूम पै आर ना पावै। भणत नाम देव एक नाम निस्तार है, जे गुर मिलै ते पार उतार है। हस्त खेलत तेरे देहुरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। हिन्नड़ी जात मेरी जात मराया, शिपे के जन्म काहे कवाया। रहाओ लै कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछे बैठा जाए। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना का देहुरा फिरै। पैरो नाम देओ जियो कर दूजा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखावंत जल सेती काज। जैसी मूड़ कुटम परायण, ऐसी नामे प्रीत नारायण। नामे प्रीत नारायण लागी, सहि सुभाए पयो बैरागी। रहाओ जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए। कबहु ना टूट सो रया समाए, नामे चित लाया सच नाए। जैसी प्रीत बार क्यार माता, ऐसा हरसेती मन राता। प्रणवै नाम देव लागी प्रीत, गोविंद बसै हमारे चीत। कर की नार त्या गए अंदा, पर नारी सो का लै तंदा। जैसे सिंबल देख सुआ बिकसाना, अंत की बार मुआ लपटाना। पापी का कार्य अग्नि माहे, जलत रह मिटवै कब नाहे। रहाओ हर की भगतना देखै जाए, मार्ग छोड़या मार्ग पाए। मूलों पूला आवै जाए, अमृत डार लाद बिख खाए। ज्यों बेसवा के परया खारा, कापर पहर करै सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वाके गले जमका है फास। जाके मस्तक लिखियो करमा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम देव एहो बिचार, इन बित संतो उतरो पार। संडा मरका जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे। राम कहे कर ताल बजावे, चटिया सबै बिगारे। राम नामा जप बो करै, हृदय हर जी को सिमरन धरै। रहाओ बसदा बस कीनी, सब राजे बिनती करै पटरानी। पूत प्रहलाद कया नहीं मानै, तिन तौ औरै ठानी।
दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सह औद कनेरी गिर तल जल ज्वाला पै राखे ओ राजा राम माया फेरी काढ़ खड़ग काल पै कोप्यो मोहे बताओ जो तुहे राख पीत पितंबर त्रि पवन तनी थंब माहे हर पाख हर नाकसो जिन नख बिदारियो सुर नर किए सनाथा कह नाम देव हम नर हर त्यावै राम अप है पददाता सुल्तान पूछे सुन बेनामा देखो राम तुम्हारे कमा नामा सुल्तान ने बांधला देखो तेरा हर बीठला रहाओ बिस्मिल गऊ देहो जी आए नातर गर्दन मारो उठाए बादशाह ऐसी क्यों होए बिस्मिल किया ना जीवे कोए मेरा किया कछु ना होए कर है राम होए है सोए बादशाह हो चढ़े अहंकार गज हस्ती दिनो चमकार रुदन करे ना मैं की माए छोड़ राम की ना पजा खुदाए ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गाए करे गजेंद सुंड की चोट ना माए उबरे हर की ओट काजी मुल्ला करे सलाम इन हिंदू मेरा मलिया मान बादशाह बेनती सुने हो नमे सर पर सोना ले हो माल ले हो तो दोजक परो तीन छोड़ दुनिया को परो पावो बेड़ी हाथो तालो नामा गावे गुण गोपाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा हर करता रह सात कड़ी जा बीती सुनी अजो ना आयो त्रिपवन तनी पाखंतन बाज बजाएला गर चढ़े गोविंद आएला अपने भगत पर की प्रतपाल गरड़ चढ़े आए गोपाल कहे ता तरन एक ओडी करो कहे ता लेकर ऊपर तरो कहे ता मुई गऊ देव जी आए सब कोई देखे पति आए नामा प्रणवै सेल मसेल गऊ दुहाई बछरा मेल दूध दोहे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह महल में जाए औकट की कट लगी आए काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाए नामा कहे सुनो बादशाह एहो किश पतिया मुझे दिखाए इस पतिया कह परवान साच सील चलो सुल्तान नाम दे सब रया समाए मिल हिंदू सब नामे पै जाए जो अब की बार ना जीवे गाए ता नाम देव का पतिया जाए नामे की कीर्त रही संसार भगत जनाले उधरिया पार सगल कलेस निंदक पया खेद नामे नारायण नाही भेद कर दूजा जाओ गुरदेव ता मिले मुरार जाओ गुरदेव ता उतरै पार जाओ गुरदेव ता बैकुंठ तरै जाओ गुरदेव ता जीवत मरै सत सत सत सत सत गुरदेव झूठ झूठ झूठ झूठ आन सब सेव रहाओ जो गुरदेव ता नाम दृढ़ावै जो गुरदेव ना दे दिस्तावै

तुम दाते प्रभ दे नहार, निमख निमख तिस नमस्कार रहाओ। जिसै प्राप्त साध संग, तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग। ते बंधन ते पय मुक्त, भगता राधा जुग जुगत। नेत्र संतोखे दर्स पेख, रसना गाए गुण अनेक। तृष्णा बूझी गुर प्रसाद, मन या गाना हर सह सुवाद। सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख परंपर देव। सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो इहो निदान। बसंत महला पंजवा, तुम बरदाते दे रहे, जी प्राण में रव रहे। दीने सगले भोजन खान, मोहे निर्गुण एक गुण ना जान। हाँ कछु ना जाना तेरी सार, तू करगत मेरी प्रभ दयार रहाओ। जापना तापना कर्म कीत, आवै नाही कशूरीत। मन में राख वासेक, नाम तेरे की तरह टेक। सर्व कला प्रभ तुम परवीन, अंत ना पावै जलै मीन। अगम अगम ऊंचे ते ऊच, हम थोरे तुम बहुत मूच। जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से तनी। जिन तू सेवया सुखी से, संत सरन नानक परे। बसंत महला पंजवा, तिस तू सेव जिन तू किया, तिस आराध जिन जियो दिया। तिसका चाकर हो हे फिर डान ना लागे, तिसकी कर पोतदारी फिर दुख ना लागे। एवड भाग हो हे जिस प्राणी, सो पाए पर निर्वाणी रहाओ। दूजी सेवा जीवन बिरथा, कशुना होई है पूर्ण अर्था। मानस सेवा खरी दुहेली, साध की सेवा सदा सुहेली। जे लोड़े सदा सुख पाई, साधु संगत गुरै बताई। ऊहा जपिए केवल नाम, साधु संगत पार ग्राम। सगल तत् में तत् ज्ञान, सर्व ध्यान में एक ध्यान। हर कीर्तन में उत्तम धुना, नानक गुर मिल गाए गुना। बसंत महला पंजवा, जिस बोलत मुख पवित होए, जिस सिमरत निर्मल है सोए। जिस आराधे जम किश ना कहे, जिसकी सेवा सब किश लहै। राम राम बोल राम राम, त्यागो मन के सगल काम रहाओ। जिसके तारे तरन आकाश, कट कट जिसका है प्रगास। जिस सिमरत पतत पुनीत होए, अंतकार फिर ना रोए। सगल धर्म है उत्तम धर्म, कर्म करतूत कै ऊपर कर्म। जिसको चाहे सुर नर देव, संत सवा की लगो सेव। आद पुरख जिसकी यादान, तिसको मिलिया हर निदान। तिसकी गतमित कही ना जाए, नानक जन हर हर ते आए। बसंत महला पंजवा, मन तन भीतर लागी प्यास। गुरदयाल पूरी मेरी आस, किले विख काटे साध संग। नाम जपयो हर नाम रंग, गुर प्रसाद बसंत बना। चरण कमल हृदय और तारे, सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरथ

अंतर्यामी प्रभ दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोह देहो दान, जप जीवे नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां, राम रंग सब गए पाप, राम जप तो कछ नहीं संताप, गोविंद जप तो समट अंधेर, हर सिमर तो कछ नाए फेर। बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगतहीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करण हार, ई तूत प्रभ कार्य सार, चरण कमल सो लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जाकै सिमरन नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए, गुरपूरे की सदा सरनाई, साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देस दिसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे, ओए अपना बीजा आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंचना सकस कोए। प्रभदास रखे कर जतने आप, अखंड पूर्ण जाको प्रताप, गुण गोबिंद नित रसन गाए, नानक जीवे हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवा, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जप जीवे नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर चित आवै, फिर सतगुर दी सह बिललांती, सागत फिर फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पह बिन से निरपै पद पाया, गुरमिल नानक खसम ते आया, साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस। जल थल महियल रव रहया, गुरमिल नानक हर हर कहया, अहिट सिद्ध नवनिद एह, कर्म प्राप्त जिस नाम देह, प्रभ जप जप जीवै तेरे दास, गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवा, कर पहला एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जपनिया, प्रभ मिले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोबिंद रमण योग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नगर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, से सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख धनी, मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पूजा रिया। बसंत महला पंजवा, किल बिख बिनसे गाए गुना, आन दिन उपजी सही धुना, मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन भेटे, नित राताओ हर नाम रंग रहाओ। कर कृपा प्रगटे गोपाल, लड़ लाए उधारे दीन दयाल, एहो मन होवा साध तूर, नित देखे स्वामी हजूर। काम क्रोध तृष्णा गई, नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवा, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने करथाप, सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरनी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाओ।
ਸਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿੰਦੀਆ। ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ, ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੋ ਉਧਾਰੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ, ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ, ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ। ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ, ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ, ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅਨ ਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ, ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ, ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ, ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰ ਦੂਜਾ ਹਿੰਡੋਲ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਬੀਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਅੰਤਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਪੀਰ। ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ, ਸਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਜੀਤੋ, ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ, ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ, ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਉ, ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੈ, ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ।

जोगी जंगम अरसन्यास सभी पर डारिये फास। जेह जे हर को नाम समार ते पव सागर उतरे पार। जन नानक हर की शरणाए दीजे नाम रह गुण गाए बसंत महला नावा। माई मैं तन पायो हर नाम मन मेरो धामन ते छूटो कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान लोभ मोए परसना साकै गही भगत भगवान। जन्म जन्म का संसार चूकार तन नाम जप पाया तृष्णा सकल बिनासी मनते नहीं सुख माए समाया। जा कहो दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावै कहो नानक बिद की संपै को गुरमुख पावै। बसंत महला नावा मन कहां बिसार्यो राम नाम तन बिनसै जम स्यों परै काम रहाओ। एहो जग तुए का पहार तै साचा मानिया के विचार तनदारा संपत ग्रेह कै संग न चालै समझ लेहे। एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजते एक रंग बसंत महला नावा। कहा पूल्यो रे झूठे लोभ लाग कछ बिगड़ियो नाहन अजो जाग रहाओ। सम सुपना कहो जग जान बिन सैशन मैं साची मान। संग तेरे हर बस्त नीत निस्बासर पाइता है मीत बार अंत की होए सहाय कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जग कौआ नाम नहीं चीत नाम विसार ग्रह देख पीत। मनुआ डोले चीता नीत जग स्यों तूटी झूठ प्रीत। काम क्रोध बिख बज्जर भार नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ। कार बालू का कुमन केर बरखस बाणी बुध बुदा हेर मात्र बूंद ते तार चक फेर। सर्ब जोत नामे की चेर सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पग लागो तोर। नाम रता चाहो तुझे और नाम दुराए चले सो चोर। पत खोई बिखियन चल पाए साच नाम रतो पास्यों कर जाए जो किश कीनस प्रभर जाए। पै माने निरपो मेरी माए कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग। खिले बिकसै ते तो सोग प्रभ शरणागत कीनस होग। कापड़ पहरस अधिक सिंगार माटी फूली रूप बेकार। आसा मनसा बांधो बार नाम बिना सुना कर बार। गाचो पुत्री राजकुमार नाम भणो सच दोत सवार। प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर सबदी बिखत्यास निवास। गुर सबदी बिखत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तोहे। नानक ठांडे चाहे प्रभु दयार तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत महला पहला मन भूलो परमस आए जाए अत लुब्ध लुबानो बिख माए। नय असरदी सहक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए। मन भूलो समझ सो साच नाए गुर शब्द बिचारे सहज पाए रहाओ। मन भूलो परमस पवर तार बिल बिरथे चाहे बहु बेकार। मैंगल ज्यो फासस काम हार कड़बंधन बांध्यो शीस मार। मन मुग्धो दादर भगतहीन दर प्रहट सरापी नाम बीन। तां कै जात ना पाती नाम लीन सब दुख सखाई गुण है बीन। मन चले न जाई ठाक राख बिन हर असराते पत ना साख। तू आपे सुरता आप राख
ਧਰ ਧਾਰਨ ਦੇਖੈ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸ ਕਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੇਲੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਮਾਏ, ਅਵਗਣ ਛੋਡੋ ਗੁਣ ਕਮਾਏ, ਗੁਰਸਬਦੀ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਕੱਢੈ ਧੋਏ, ਸਦਾ ਮੁਕਤ

गुर पूछ तुम करो विचार, जै देखो तै सरंग पान, क्या हो आखां जां कछु नाहे, जात पात सब तेरे नाहे। काहे माल दर्ब देख गर्भ जाहे, चलती बार तेरो कछु नाहे। पंच मार चित रखो थाए, जोग जुगत की अह पाए। हम मैं पैखड़ तेरे मने माहे, हर ना चेतै मूड़े मुक्त जाहे। मत हर विसरिया जम वस पाहे, अंत काल मूड़े चोट खाए। गुर शब्द विचारै आप जाए, साच जोग मन वसै आए। जिन जियो पिंड दिता तिस चेतै नाहे, मड़ी मसाणी मूड़े जोग नाहे। गुरु नानक बोलै भली बाण, तुम हो सुजाके लियो पछाण। बसंत महला पहला, दुबदा दुरमत अदली कार। मनमुख परमै मंज गुबार, मन अंदला अंदली मत लागै। गुर करणी बिन भरम ना पागै रहाओ। मनमुख अंदले गुरमत ना पाई, पशु भय मान न जाई। लख चौरासी जन तो पाए, मेरे ठाकर पाणे सिरज समाए। सगली भूलै नहीं सबदा चार, सो समझै जिस गुर करतार। गुर के चाकर ठाकर पाणे, बख्श लिए नाहीं जमकाने। जिनकै हृदय को पाया, आपे मिले भ्रम चुकाया। बेमोहताज बेअंत अपारा, सच भतीजै करणै हारा। नानक भूले गुर समझावै, एक दिखावै साहि टिकावै। बसंत महला पहला, आपे पवरा फूल बेल, आपे संगत मीत मेल। ऐसी पवरा बासले, तरवर फूले बन हरे रहाओ। आपे कवला कंत आप, आपे रावे शब्द थाप। आपे बछरू गऊ खीर, आपे मंदिर।

सर सागर गुण गहीर, तू अकुल निरंजन निरंजन परम हीर। तू आपे करता करण योग, ने केवल राजना सुखी लोग। नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद। बसंत हिंडोल महला पहला, कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। नौ सत चौदह तीन चार, कर महल चार बहाली। चारे दीवे चौ हथ दिए, एका एका वारी। मेहरवान मधुसूदन माधव, ऐसी संगत तुम्हारी रहाओ। घर कर लश्कर पावक तेरा, धर्म करे सिकदारी। धरती देग मिलै कवेरा, भाग तेरा भंडारी। नासा बूर होवै फिर मंगै, नारद करे खुआरी। लाभां देरा बंदी खाना, अवगुण पैर लोहारी। पूंजी मार पवै नित मुदगर, पाप करे कोटवारी। पावै चंगा पावै मंदा, जैसी नजर तुम्हारी। आद पुरख को अल्लाह कही है, सेखा आई वारी। देवन देवत्यां कर लागा, ऐसी कीर्त चाली। कूंजा बाग निवाज मुसल्ला, नील रूप बनवारी। घर घर मियां सबना जिया, बोली अवर तुम्हारी। जे तू मीर महीपत साहिब, कुदरत कौन हमारी। चारे कुंट सलाम करेंगे, घर घर सिफत तुम्हारी। तीर्थ सिमरत पुन दान, किशलाह मिलै दिहाड़ी। नानक नाम मिलै वडियाई, मेका कड़ी संभाली। बसंत हिंडोल कर दूजा महला चौथा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। काया नगर एक बालक वसिया, खिन पल थिर ना रहाई। अन क्यों पाव जतन कर थाके, बारंबार परमाई। मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन, सतगुर मिलै ता पूरा पाईऐ। भज राम नाम निशान रहाओ। एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं वसिया। राम नाम गुर उदक चुआया, फिर हरिया हुआ रसिया। मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया, एक गुरमुख चलत दिखाया। बाहर खोज मोए सब सागत, हर गुरमति कर पाया। दीना दीन दयाल पए है, जो कृष्ण बिदर कर आया। मिल्यो सुदामा भावनी तार, सब किश आगे दालद पंज समाया। राम नाम की पैज वडेरी, मेरे ठाकरे आप रखाई। जे सब सागत करे बखीली, एक रती तिल ना कटाई। जन की उसत है राम नामा, दे दे शोभा पाई। निंदक साकत खब ना सकै, तिलो अपने कर लू की लाई। जन को जन मिल शोभा पावै, गुण में गुण परगासा। मेरे ठाकर के जन प्रीतम प्यारे, जो होवै दासन दासा। आपे जल परंपर करता, आपे मिल मिलावै। नान गुरमुख सहज मिलाए, ज्यों जल जलै समावै। बसंत महला पंजवां, कर पहला दो तुकिया, एको अंकार सतगुर प्रसाद। सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उदरिया कह एक बार। बाल्मीकै होवा साध संग, ध्रुव को मिलिया हर निसंग। तेरिया संतां जाचौ चरण रेन, ले मस्तक लावो कर कृपा देन रहाओ। गन का उदरी हर कहै तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोख। बिपर सदामे दालद पंज, रे मन तू पी पज गोबिंद। बदक उदारो खम परहार, कुबजा उदरी अंगुष्ट तार। पिदर उदारो दास्त पाए, रे मन तू पी हर ते आए। प्रहलाद रखी हर पैज आप, बस्तर शीनत द्रौपदी रखी लाज। जिन जिन सेवया अंत बार,
ਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਤੂੰ ਪਰੈ ਪਾਰ, ਧੰਨੈ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਤਰਲੋਚਨ ਗੁਰਮਿਲ ਪਈ ਸਿੱਧ, ਬੇਣੀ ਕਹੋ ਗੁਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਪੀ ਹੋਏ ਦਾਸ, ਜੈ ਦੇਵ ਤਿਆਗਿਓ ਅਹੰ ਮੇਵ, ਨਾਈ ਉਦਰਿਓ ਸੈਨ ਸੇਵ, ਮਨ ਡੀਗ ਨਾ ਡੋਲੈ ਕਹੂੰ ਜਾਏ, ਮਨ ਤੂੰ ਪੀ ਤਰਸੈ ਸਰਨ ਪਾਏ, ਜਿਹਾ ਨਗਰੋ ਠਾਕਰ ਕੀਓ ਆਪ, ਸੇ ਤੈ ਲੀਨੇ ਭਗਤ ਰਾਖ, ਤਿਨਕਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕੋਏ, ਇਹ ਬਿਦ ਦੇਖ ਮਨ ਲੱਗਾ ਸੇਵ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਆਇਓ ਏਕ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਹਰ ਜੀਓ ਬਸੈ ਸੰਗ, ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ, ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਨਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮੇ ਜੋਨ ਮਾਹੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਨਰਕ ਪਾਹੇ, ਭਗਤ ਬਿਹੂਨਾ ਖੰਡ ਖੰਡ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਜਮ ਦੇਤ ਡੰਡ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਮੀਤ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤ, ਰਹਾਉ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਵਤ ਕਹੂੰ ਕਾਜ, ਤੂੰ ਬਾਦਰ ਸਭ ਮਾਇਆ ਸਾਜ।

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम न हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरन का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा नाहे, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। करने हारा लिपत आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख ले हो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै, हो हरिया पाई। कर्म लिखन तै पाई है, हिरुत सुहाई। वन त्रैण त्र पौन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुखी उपजै, लथी सब शाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुण ना ताई। पंजे बद्दे महाबली, कर सच्चा टोवा। अपने चरण जपायन, विच दै खड़ोवा। रोग सोग सब मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैण नाम त्याईंदा, फिर पाए ना मोवा। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होवा। किथों उपजै कह रह, कै माए समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कहन त्याईन सुन नित, से भगत सुहावै। अगमा गोचर साहेबो, दूसर लवै ना लावै। सच पूरै गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगता की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, कटकट मौलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया अंत पाए, जै देखाओ तै रहा समाए। रहाओ द्वितीया मौल्य चार वेद, सिमरत मौल्य स्यों कतेब। शंकर मौल्य योग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग त्यान। सन्यासी माते हमेव, तपसी माते तब कह पेव। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग। रहाओ जागै सुख देओ आर्याकूर, हनुमंत जागै तर लंकूर। शंकर जागै चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सुबत बहु प्रकार, गुरमुख जागै सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर भज राम नाम। जोय खसम है जाया, पूत बाप खेल आया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ। रहाओ पग्गा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पैसोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन असन गऊ लवेरी, पेंडे बिन बाटक नेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पंड साल, संग सखा बहुलिए बाल। मोको कहा पढ़ाव सियाल जाल, मेरी पटिया लिख देहो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न से नहीं काम। रहाओ संडै मर कह कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छिड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहा सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार। काड खड़ग को प्यो रसाए, तुझ रख नहारो मोहे बताए। प्रभ थम ते निकसे कै विस्तार, हर नक्ष छेद्यो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कह कबीर को लखे ना पार, प्रहलाद उधारे अनकबार।
ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਮੱਦੇ ਮਦਨ ਚੋਰ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰਲੀਨ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਕਾਹੇ, ਕੋ ਨਾ ਬਿਗੂਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਵਾਹੇ। ਮਾਦਾ ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਸਯੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਰਹਾਓ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ। ਕਬ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਤਾਰ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਵਸਰ ਚੱਲੇ ਸਾਰ। ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੋ ਮੋਹੇ ਥਾਹ ਨਾਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੁਖ ਕਹੋ ਕਾਹੇ। ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖਿਆਥ ਤੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਰਹੁ ਕਬੀਰ। ਨਾਇਕ ਏਕ ਬਨਜਾਰੇ ਪਾਚ, ਬਰਦ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗ ਕਾਚ। ਨਹੁ ਬਹੀਆਂ ਦਸ ਗੁਣ ਆਹੇ, ਕਸਨ ਬਹੱਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ। ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਣਜ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਨਕਾਜ, ਜਿਹ ਘਟੈ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੈ ਬਿਆਜ। ਰਹਾਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਨ ਜਕੀਨ, ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਤੀਨ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤਰਾਰ, ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਚਾਰ। ਪੂੰਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਨਜ ਟੂਟ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਯੋ ਫੂਟ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪਾਜ। ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

भागे। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैस हो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे। इंद्री की जूठ उतर सनाही, ब्रह्म अग्न के लूठे। अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया। जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा। कह कबीर ते नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चलै मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पही ओ मंग, कह चंदन चोवा बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगर बिकल ब्रह्म काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक भजै, चिरंकाल ना जीवै दो को लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै, लोग हसै। चरण कमल मेरा ही रह बसै रहाओ। जैसे अपने तरह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना।

नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा, लोभ लहर अत निजर बाजे काया डूबे केसवा, संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठला, रहाओ अनल बेड़ा हों खेव ना सकाओ तेरा पार ना पाया बीठला, हो दयाल सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा, नामा कह हों तार पी ना जाना, मोको बहां दे बीठला, सहज अवल धूड़ मणि गाड़ी चालती, पीछे तिनका लेकर हागती, जैसे पनकत थ्रू टिट हाँकती, सर तोवन चाली लाडली, रहाओ तोबी तोवे बिरा बिराता, हर चरण मेरा मन राता, पंत नाम देव रम रहे अपने भगत पर कर दया, बसंत बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तुझे सुजनता कशु नाहे, पहरावा देखे उपजाहे, गर्भवती का नाही ठाओ, तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ, तू काए गर्भ बावली, जैसे पांदव खूंब राज, तू तिस्ते खरी उतावली, रहाओ जैसे कुरंक नहीं पायो पेद, तन सुगंध ढूंढे परदेस, आप तन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुवार, पुत्र कलत्र का करे हंकार, ठाकर लेखा मंगनहार, फेड़े का दुख सह जियो, पाछे किसे पुकार है पियो पियो, साधु की जौ लेहे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट, कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम, बसंत कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुरह की जैसी तेरी चाल, तेरी पुष्ट ऊपर चमक बाल, इस घर में है सो तू ढूंढ खाहे, और किसी ही के

तिन जन की सेवा थाए पई, जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले, ते उत्तम भगत भले, जो भावत हर राम मुरारी। जिनका अंग कर मेरा स्वामी, तिनकी नानक हर पै सवारी। सारंग महला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान। सब सृष्ट का प्रभो मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर, हर का नाम अमृत हर हर। हरे सो पीवे जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले जे सदगुरु। सो जन हर हर अमृत नाम चखासी, जो जन सेवै सद सदा मेरा हर हरे। तिनका सब दुख भरम पौ जासी, जन नानक नाम लय तां जीवै। ज्यो चात्रक जल पीए त्रिपतासी। सारंग महला चौथा, जप मानो श्री राम। राम रमत राम सत सत राम, बोलो पैया सद राम। राम राम रव रहया सरबगे रहाओ। राम आपे आप, आपे सब करता। राम आपे आप, आप सबत जगे। जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राए। सो जानो राम नाम लिव लागे, राम नाम की उपमा देखो हर संतो। जो भगत जना की पत राखे विच कल जुगे अगे। जन नानक का अंग किया मेरे राम राए, दुश्मन दुख गए सब भगे। सारंग महला पंजवा, चौप दे कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सतगुर मूर्त कहो बल जाओ, अंतर प्यास चात्रक ज्यो जल की। सफल दर्शन कद पाओ रहाओ, अनाथा को नाथ सर्व प्रतपालक। भगत वच्छल हर नाओ, जा कहो कोई ना रखे प्राणी। तिस तू दे असराओ, नि तरिया तार निगत्या गत। निथाविया तू थाओ, दह दिस जाओ तहां तू संगे। तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक ते लाख लाख ते का। तेरी गत मित कह ना सकाओ, तू बेअंत तेरी मित नहीं पाई है। सब तेरो खेल दिखाओ, साधन का संग साध स्यों गोष्ट। हर साधन स्यों लिवलाओ, जन नानक पाया है गुरमत। हर देहो दर्शमन चाओ, सारंग महला पंजवा। हर जियो अंतर जामी जान, करत बुराई मानख ते छिपाई। साखी पूत पवान रहाओ, बैसनो नाम करत खटकर्मा। अंतर लोभ जूठान, संत सभा की निंदा करते डूबे सब अज्ञान। करह सोम पाक हिरै पर दरबा, अंतर झूठ गुमान। शास्त्र वेद की विद नहीं जाने, व्यापे मन कै मान। संध्या काल करे सब वर्ता, ज्यो सफरी दमफान। प्रभु पलाए उजड़ पाए, निहफल सब करमान। सो ज्ञानी सो बैसनो पढ़िया, जिस करी कृपा भगवान। उन सतगुर से परम पद पाया, उदरिया सगल विस्वान। क्या हम कथे किश कथ नहीं जाने, प्रभ पावे तवे बुलान। साध संगत की तूर एक मांगो, जन नानक पयो सरान। सारंग महला पंजवा, अब मोरो नचनो रहो। लाल रंगीला सहजे पायो, सतगुर बचन लहो रहाओ। कुवार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिया बचन उपहास कहो। जो सुरजन गृह पीतर आयो, तब मुख काज लज्जो। ज्यो कन को कोठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते शुद्ध पय है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तऊ लो बजयो, मूर्त करी पलो। बजामन हारो ऊट सुधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूर आन्यो, तब ओ पिहन दृष्टो। कहो नानक कुंभ जलै मैं डारियो, अंबे अंब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रसनी को, बावर बिकस्यों गए रहा रहाओ। दुलब जन्म चिरंकाल पायो, जा तो कौडी बदलहा बदलहा।
ਕਾਥੂਰੀ ਕੋ ਗਾਹ ਕੇ ਆਇਓ, ਲਾਦਿਓ ਕਾਲਰ ਬਿਰਖ ਜਿਵਹਾ। ਆਇਓ ਲਾਭ ਲਾਭਨ ਕੈ ਤਾਈ, ਮੋਹਨ ਠਗ ਔਰੀ ਸਿਉ ਉਲਝ ਪਹਾ। ਕਾਚ ਬਾਦਰੈ ਲਾਲ ਖੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਸਰ ਕਦ ਲਹਾ। ਸਗਲ ਪਰਾਧ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਠਾਕਰ ਛੋਡੈ ਦਾਸ ਭਜਹਾ। ਆਈ ਮਸਟ ਜੜਵਤ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਉ ਤਸਕਰ ਦਰਸਾਨਹਾ। ਆਨਿਓ ਪਾਉ ਨਾ ਕਉ ਸੂਜੈ, ਹਰ ਦਾਸਾ ਸਰਣੀ ਪਰ ਰਹਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਬ ਹੀ ਮਨ ਛੁੱਟੀ ਐ, ਜੋ ਸਗਲੇ ਔਗਨ ਮੇਟ ਧਰਹਾ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਾਈ ਤੀਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਓ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਅਨੂਪ ਰੰਗ ਰੇ, ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਰੁਚੈ ਨਾ ਲਾਗਿਓ ਰਹਾਓ। ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੇ ਮੁਖ ਟੇਰਾਓ, ਨੀਂਦ ਪਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਓ। ਹਾਰ ਕੱਜਰ ਬਸਤਰ ਅਨਕ ਸਿੰਗਾਰ ਰੇ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਸਭੈ ਬਿਖ ਲਾਗਿਓ। ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਛੋ ਦੀਨ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਕਉ ਕਹਿ ਪ੍ਰੇ ਦੇ ਸੰਗਿਓ। ਹੀਓ ਦਿਓ ਸਭ ਮਨ ਤਨ ਅਰ ਪਉ, ਸੀਸ ਚਰਨ ਪਰ ਰਾਖਿਓ। ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਮੋਲ ਦਾਸਰੋ, ਦਿਉ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਅਰ ਦਾਗਿਓ। ਕਰਹੋ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੋ, ਨਿਮਖ ਦਰਸ ਪੇ ਖਾਗਿਓ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਈ ਤਵ ਭੀਤਰ ਆਇਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੀਤ ਲਾਗਿਓ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗਾਏ, ਸ਼ਬਦਾ ਨਾਹਦ ਬਾਜਿਓ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਾਈ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਹਰ, ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਸਾਧਾ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਰੈ ਕਹਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਕ ਗਾਂਠੜੀ ਬਾਂਧਾ ਰਹਾਓ। ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਨਖਿਅਤਰ ਬਿਨਾਸੀ, ਰਵ ਸਸੀਅਰ ਬੇਨਾਦਾ। ਗਿਰ ਬਸਦਾ ਜਲ ਪਵਨ ਜਾਏਗੋ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ। ਅੰਡ ਬਿਨਾਸੀ ਜੇਰ ਬਿਨਾਸੀ, ਉਤ ਪੁਜ ਸੇਤ ਬਿਨਾਦਾ। ਚਾਰ ਬਿਨਾਸੀ ਖਟੈ ਬਿਨਾਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਨਹਿ ਚਲਾਦਾ। ਰਾਜ ਬਿਨਾਸੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਸੀ, ਸਾਤਕ ਪੀਬੇ ਨਾਦਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਆਗਾਦਾ। ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਆਪੇ, ਸਭ ਆਪਣ ਖੇਲ ਦਿਖਾਦਾ। ਪਾਇਓ ਨਾ ਜਾਈ ਕਹੀਂ ਭਾਂਤ ਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਿਲ ਲਾਦਾ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਾਸਬੋ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਜਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਭਇਓ ਹੈ ਠਾਕਰ, ਤਹਾਂ ਨਗਰ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਰਹਾਓ। ਜਹਾਂ ਬਿਸਰੈ ਠਾਕਰ ਪਿਆਰੋ, ਤਹਾਂ ਦੁਖ ਸਭ ਆਪਦ। ਜਹਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰੂਪ, ਤਹਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੰਪਦ। ਜਹਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ ਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਤੈ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨਦ। ਜਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਸ, ਤੈ ਸਗਨ ਬਾਸ ਫਲਾਨਦ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੋਟ ਬਰਖ ਜੀਵੈ, ਸਗਲੀ ਔਧ ਬਿਰਥਾਨਦ। ਏਕ ਨਿਮਖ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕਰ, ਤਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜੀਵਾਨੰਦ। ਸਰਨ ਸਰਨ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੋ, ਦੀਜੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾਨੰਦ। ਨਾਨਕ ਪੂਰ ਰਹੋ ਹੈ ਸਰਵ ਮੈਂ, ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਬਿਦ ਜਾਨੰਦ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਬ ਮੋਹੇ ਰਾਮ ਭਰੋਸੋ ਪਾਏ, ਜੋ ਜੋ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਕਰਨਾ ਨਿਦ, ਤੇ ਤੇ ਭਵੈ ਤਰਾਏ ਰਹਾਓ। ਸੁਖ ਸੋਇਓ ਅਰ ਸਹਿ ਸਮਾਇਓ, ਸਹਿਸਾ ਗੁਰੈ ਗਵਾਏ। ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਹਰ ਕੀਓ, ਮਨ ਬਾਂਸ਼ਤ ਫਲ ਪਾਏ। ਹਿਰਦੈ ਜਪੋ ਨੇਤਰ ਧਿਆਨ ਲਾਵੋ, ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ। ਚਰਨੀ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਠਾਕਰ ਕੈ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਦੇਖਿਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਬ ਮੰਗਲ ਰੂਪ, ਉਲਟੀ ਸੰਤ ਕਰਾਏ। ਪਾਇਓ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਨਾਮ ਹਰ, ਛੋੜ ਨਾ ਕਥੂ ਜਾਏ। ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਕੌਣ ਵਡਾਈ, ਕਿਆ ਗੁਣ ਕਹੋ ਰੀ ਜਾਏ। ਹੋਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਤ ਦਸਾਏ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਓਏ ਸੁਖ ਕਾਸਿਓ ਵਰਨ ਸੁਨਾਵਤ, ਅੰਧ ਬਿਨੋਦ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਨ। ਮਨ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਾਓ, ਬਿਸਮ ਭਈ ਪੇਖ ਬਿਸਮਾਦੀ, ਪੂਰ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾਵਤ। ਪੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ, ਜਿਉ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਵਤ। ਜੈਸੇ ਪਵਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਾਖਿਓ, ਬੂਜ ਨਾ ਆਵਤ ਜਾਵਤ। ਜਾਂ ਕਉ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਇਓ ਹਰ, ਉਵਾਂ ਕੀ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹਾਵਤ। ਆਨਿਓ ਭਾਵ ਜੇਤੇ ਕਿਛ ਕਹੀਐ, ਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖੇ ਪਾਵਤ। ਅਚਿੰਤ ਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਖਾਵਤ।
निर्गुण निरंकार अवनाशी तुल्लो तुल्यो ना जावत। कहो नानक अजर जिन जरिया तिस ही कहो बनयावत। सारंग महला पंजवा बिखई दिन रहन इवही गुदारे। गोविंद ना भजे अहं बुद्ध माता जन्म जुवे ज्यों हारै रहाओ। नाम अमोला प्रीत ना तिस्यो पर निंदा हितकारै। छापर बांध सवारै तरण को द्वारै पावक जारै। कालर पोट उठावै मुंडै अमृत मंते डारै। ओडै बस्त्र काजर मै परया बहुर बहुर फिर चारै। काटै पेड़ डाल पर ठंडो खाए खाए मुस्कारै। गिरो जायर सातल परयो छिटी छिटी सिर पारै। निर्वैरै संग वैर रचाए पहुँच न सकै गवारै। कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकारै। सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया। एक सुधाखर जाकै हृदय वसिया तिन बेदै तत् पछानिया। रहाओ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोक पिचारा। जौ लौरदै नहीं प्रगासा तौ लोवंद अंधारा। जैसे धरती साधै बहु बिद बिन बीजै नहीं जामै। राम नाम बिन मुक्त ना होई है तुटै नाही अभिमानै। नीर बिलोवै अत श्रम पावै नैनू कैसे रीसै। बिन गुर भेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसै। खोजत खोजत है बिचार्यो सर्व सुखा हर नामा। कहो नानक तिस भयो प्राप्त जाकै लेख मथामा। सारंग महला पंजवा अन दिन राम के गुण कहिया। सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांशत फल लहिया। रहाओ आवो संत प्राण सुखदाते सिमरै प्रभ अबनासी। अनाथै नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो कटवासी। गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड भागे। कल कलेस मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे। काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे। मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे। तू समर्थ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा। पूर रहो सर्व मैं ठाकर नानक सो प्रभ नेरा। सारंग महला पंजवा बलिहारी गुरदेव चरण जाकै संग पार ब्रह्म त्याई है। उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग पै सगल बिनासे जो आवै हर संत सरण। आप जपै अवरै नाम जपावै वड़ समरथ तारन तरन। जा को मंत्र उतारै सहसा ऊने को सुभर भरन। हर दासन की आग्या मानत ते नाही फुन गर्भ परन। भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म वरन। जाको पयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन। हर रसै गाने सह समाने मुक्ते नाही जात बरन। गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उदरन। सारंग महला पंजवा गायो री मैं गुणित मंगल गायो। भले संजोग भले दिन अवसर जौ गोपाल रिजायो। रहाओ संत चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत तरे हाथा। साधे मंत्र मोर लो मनुआ ताते गत होए त्रै गुनिया। भगतै दर्श देख नैन रंगा लोभ मोह टूटे परम संगा। कहो नानक सुख सहज आनंदा खोल पीत मिले परमानंदा। सारंग महला पंजवा कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। कैसे कहो मोहे जी बेदनाई दर्शन प्यास प्रे प्रीत मनोहर मन ना रह बहुबिद उमकाई। रहाओ चितवन चितवो प्रे प्रीत बैरागी कद पावो हर दरसाई। जतन करो इहो मन नहीं तीरै कु हैरे संत मिलाई। जप तप संजम पुन सब होमो ते सरपो सब सुख जाई। एक निमख प्रे दर्श दिखावै ते संतन कै बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती से बोधन रहनाई। मान अवमान हो सगल त्यागो जो परे बात सुनाई। देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सतगुर पुरख मिलाई। प्रभ रंग दयाल मोहे गृह मैं पाया जन नानक तप्त बुझाई। सारंग महला पंजवा
अरे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही, नरक घोर मह उर्द तप करता, निमख निमख गुण गाही रहाओ। अनक जन्म भ्रम तो ही आयो, मानस जन्म दुलबाही, गर्भ जोन छोड़ जो निकसो तो लागो अंठाही। करे बुराई ठगाई दिन रहन, नेफल कर्म कमाही, कण नाही तो गाहन लागे, ताए ताए दुख पाही। मिथ्या संग कूड लपटायो, उर्ज परयो कुस माही, धर्म राय जब पगरस बवरे तो काल मुखा उठ जाही। सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाही, कहो नानक तिस कहो नानक तिन जन बलिहारी, जो अले प्रहे मन माही। सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिशरत होत मृतकता, गृह में रहन न पाई रहाओ। जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा संतो मोहे अपनी, प्रभ मंगल गुण गाई। चरण संतन के माथे मेरे, ऊपर नैनो तूर बशाई, जेह प्रसाद मिलिए प्रभ नानक, बल बलता कह हो जाई। सारंग महला पंजवा, वाह उसर कह हों बल जाई, आठ पहर अपना प्रभ सिमरन, वड़भागी हर पाई रहाओ। पलो कबीर दास दासन को, ऊतम सैन जन नाई, ऊच ते ऊच नाम देव समदर्शी, रविदास ठाकर बने आई। जियो पिंड तन तन साधन का, एहो मन संत रे नाई, संत प्रताप परम सब नासे, नानक मिले गुसाई। सारंग महला पंजवा, मनोरथ पूरे सतगुरे आप, सगल पदार्थ सिमरन जाकै, आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ। अमृत नाम स्वामी तेरा, जो पीवै तिस ही तृप्तास, जन्म जन्म के किल बिख नासै, आगै दरगै होए खलास। शरण तुम्हारी आयो करते, पार ब्रह्म पूर्ण बनास, कर कृपा तेरे चरण ते आवो, नानक मन तन दर्श प्यास। सारंग महला पंजवा, करती जाए को ओंकार, सतगुर प्रसाद, मन कहां लुभाई है आन कौ, ईत यूत प्रभ सादा सहाई, जी संग तेरे काम कौ रहाओ। अमृत नाम प्रे प्रीत मनोहर, एह गावन पान कौ, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठाहर नीकी ध्यान कौ। बाणी मंत्र महापुरखन की, मने उतारन मान कौ, खोज लहो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम कौ। सारंग महला पंजवा, मन सदा मंगल गोबिंद गाए, रोग सोग तेरे मिटै सगल अग, निमख ही है हर नाम ते आए रहाओ। छोड़ से आनप बहु चतराई, साधु सरनी जाए पाए, जो होए कृपाल दीन दुख पंजन, जब ते होवै धर्म राय। एक बिन नाही को दूजा, अन्न बियो लवै लाए, मात पिता पाई नानक को, सुखदाता हर प्राण साए। सारंग महला पंजवा, हर जन सगलो दारे संग के, पय पुनीत पवित्र मन, जन्म जन्म के दुख हरे रहाओ। मार्ग चले तिनी सुख पाया, जिन स्यों गोष्ट से तरे, बूढ़त कोर अंध कूप में, ते साधु संग पार परे। जिनके भाग बड़े है पाई, तिन साधु संग मुख जुरे, तिन की तूर बांछै नित नानक, प्रभ मेरा कृपा करे। सारंग महला पंजवा, हर जन राम राम राम त्याए, एक पलक सुख साथ समागम, कोठ बैकुंठ पाए रहाओ। दुलभ देह जब होत पुनीता, जम की त्रास निवार, महापतत के पात के उतराए, हर नामा और तार। जो जो सुने राम जस निर्मल, ताका जन्म मरण दुख नासा, कहो नानक पाईए वडभागी, मंतन होए बिगासा। सारंग महला पंजवा, दोपदे कर चौथा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। मोहन कर आवो करो जदरिया, मान करो अभमान बोलो, भूल चूक तेरी प्रेचरिया रहाओ। निकट सुनो अर पेखो नाही, परम परम दुख भरिया, होए कृपाल गुरलाहे पार दो, मिलो लाल मन हरिया। एक निमख जे बिसरै स्वामी, जानो कोड़ दिन सलख बरिया, साध संगत की पीर जाओ पाई, तो नानक हर संग मिरिया।
सारंग महला पंजवा अब क्या सोचाओ सोच बिसारी करना सा सोई कर रहे।

राम नाम रस खीवन जो मीना जल से उर्जानो राम नाम संग लीवन नानक संत चातर की न्याई हर बूंद पान सुख थीवन सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन बेताल जेता करन करावन तेता सब बंधन जंजाल रहाओ बिन प्रभ सेव करत्यन सेवा बिरथा काटै काल जब जम आए संघारै प्राणी तब तुमरो कौन हवाल राख लेहो दास अपने कौ सदा सदा कृपाल सुख निधान नानक प्रभ मेरा सा संग तन माल सारंग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावन गीदे पोहत ने संसार रहाओ श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी हो साध को आचार चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी तार नाम निदान उचराओ नित रसना नानक सदबरिहार सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहे श्री धर ठाकर मिलते अंध दुख कोरी रहाओ हर के नाम स्यों प्रीत ना लागी अनक भेख बहु जोरी टूट बार ना लागे तां कहो ज्यों गागर जल फोरी कर कृपा भगत रस दीजै मन खचत प्रेम रस खोरी नानक दास तेरी सरनाई प्रभ बिन ना होरी सारंग महला पंजवा चित वाओ वाह अवसर मन माहे होय एकत्र मिलो संत साजन गुण गोबिंद नित गाहे रहाओ बिन हर भजन जेते काम करिए तेते बिरथे जाहे पूर्ण परमानंद मन मीठो तिस बिन दूसर नाहे जप तप संजम कर्म सुख साधन तोलना कछुए लाहे चरण कमल नानक मन बेदियो चरण संग समाहे सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतरजामी आगे कुशल पाछे खेम सुखा सिमरत नाम स्वामी रहाओ साजन मीत सखा हर मेरा है गुण गोपाल हर राया बिसरना जाई निमख हृदय ते पूरे गुरु मिलाया कर कृपा राखे दास अपने जी जंत वस जाकै एकाल पूर्ण परमेश्वर पाओ नहीं नानक ताकै सारंग महला पंजवा जाकै राम को बल होए सगल मनोरथ पूर्ण ताहू के दुख ना व्यापै कोए रहाओ जो जो जो जन भगत दास निज प्रभ का सुन जीवा तिस सोए उद्यम करो दर्शन पेखन कहो कर्म प्राप्त होए गुरप्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए दान देह नानक अपने कहो चरण जीवा संत तोए सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए करहो कृपा गोपाल बीठले बिसरना कभी जाए रहाओ मन तन तन सब तुमरा स्वामी आन दूजी जाए ज्यों तू रखै तिवि रहना तुमरा पैने खाए साध संगत कै बल बल जाई बहुना जन्मा ताए नानक दास तेरी सरनाई ज्यो भावै तिवै चलाए सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुखसार आन काम बेकार माया सगल दिसै शार रहाओ ग्रह अंधकूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार अनक जोनी प्रमत हार्यो प्रमत बारंबार पतत पावन भगत वछलो दीन कृपा तार कर जोड़ नानक दान मांगै साध संग उधार सारंग महला पंजवा विराजत राम को प्रताप आद ब्याज पाद सब नासी बिनसे तीन ताप रहाओ तृष्णा बुझी पूर्ण सब आसा चूके शोक संताप गुण गावत्या चुत बनासी मंतन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मत सर साधु कै संग खाप भगत मच्छर पै कट नहारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवा आतर नाम बिन

महाबज्र बिख ब्यादी सिर उठाई पोट, उगर गईया खिनह पीतर जमै ग्रासे चोट। पस परेत उष्ट गर्दब अनक जोनी लेट, पज साध संग गोबिंद नानक कश ना लागै फेट। सारंग महला पंजवा अंधे खावै बिसु के गटाक, नैन सरवण शरीर सब हुट्यो। सास गयो तत्काट रहाओ, अनाथ रियान उधरले पोखे माया गईया हाट। किल बिख करत करत पछतावै, कब न सकै शांट। निंदक जमदूती आए संघारे, ओ देवै मुंड उपर मटाक। नानक अपन कटारी आपस कौ लाई, मन अपना कीनो फाट। सारंग महला पंजवा टूटी निंदक की अद बीच, जनका राखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच। रहाओ उसका कहया कोई ना सुनई, कहीं ना बैसन पावे। इहां दुखिया गै नरक पुंचे, बहु जोनी परमावे। प्रगट पया खंडी ब्रह्मंडी, कीता अपना पाया। नानक सरन निरपव करते की, आनंद मंगल गुण गाया। सारंग महला पंजवा तृष्णा चलत बहु प्रकार, पूर्ण होत न कथो बातै अंत प्रतिहार। रहाओ सांत सुख न सहज उपजै, एह इस व्यवहार। आप पर का कछ न जानै, काम क्रोधै जार। संसार सागर दुख व्यापियो, दास लेवो तार। चरण कमल सरनाए नानक सह सदा बलिहार। सारंग महला पंजवा रे पापी तै कमन की मत लीन, निमख करी ना सिमर स्वामी जियो पिंड जंदीन। रहाओ खात पीवत स्वंत सुखिया, नाम सिमरत खीन। गर्भ उदर बिललाट करता तहा होवत दीन। महामाद बिकार बादा अनक जोन परमीन, गोबिंद बिसरे कवन दुख गनिय सुख नानक हर पद चीन। सारंग महला पंजवा मायरी चरना उठ गही, दर्शन पेख मेरा मन मोहयो दुरमत जात बही। रहाओ अगह अगाध ऊंच अबनासी, कीमत जात ना कही। जल थल पेख पेख मन बिकस्यो, पूरे ओ सर्व मही। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, मिल सादे कीनो सही। सिमर सिमर जीवत हर नानक, जम की पीर ना फही। सारंग महला पंजवा मायरी मन मेरो मतवारो, पेख दयाल आनंद सुख पूर्ण, हर रस रप्यो खुमारो। रहाओ निर्मल पय उजर जस गावत, बहुर न होवत कारो। चरण कमल स्यों डोरी राची, पेट्यो पुरख्या पारो। कर गह लीने सरबस दीने, दीपक पय उजारो। नानक नाम रसक बैरागी, कुलै समूहा तारो। सारंग महला पंजवा मायरी आन सिमर मर जा, त्याग गोबिंद जियन को दाता, माया संग लपटा हे। रहाओ नाम बिसार चले अनमार्ग, नरक

अनक सजाई गणत न आवै गर्भ गर्भ परमाहे से तनवंते से पतवंते हर की शरण समाहे गुरप्रसाद नानक जग जीतियो बहुर न आवै जाहे सारंग महला पंजवा हर काटी कुटलता कुठार भ्रम बन दहन भय खिन पीतर राम नाम परहार रहाओ काम क्रोध निंदा पर हरिया काढे साधु कै संगमार जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बहुर न जुवै हार आठ पहर प्रभ के गुण गावै पूर्ण शब्द विचार नानक दासन दास जन तेरा पुनः पुनः नमस्कार सारंग महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावै गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचै बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी पूर्णता को काम जा कर दे वसै पै पंजन तिह जाने सगल जहान खिन पल बिसर नहीं मेरे करते एहो नानक मांगै दान सारंग महला पंजवा वूठा सर्व थाई में हो आनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रगट्यो ने हो रहाओ चार कुंट दह दिस जल निध ऊन थाओ ना के हो कृपा निद गोविंद पूर्ण जी दान सब दे हो सत सत हर सत स्वामी सत साध संगे हो सत ते जन जिन प्रतीत उपजी नानक ने परमे हो सारंग महला पंजवा गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार साजन मीत सहाई तुम ही तू मेरो परवार रहाओ कर मस्तक धारियो मेरे माथे साध संग गुण गाए तुमरी कृपा ते सफल पाए रसक राम नाम ते आए आब चल नीम तराई सतगुर कभू डोलत नाही गुर नानक जप पै दयारा सर्व सुखा निद पाही सारंग महला पंजवा निभ ही नाम की सच खेप लाभ हर गुण गाए निद तन।

जैसा करै कहावै तैसा, ऐसी बनी जरूरत। होवै लिंग चिंग न होवै, ऐसी कही है सूरत। जो उस इच्छे सो फल पाए, ता नानक कही है मूर्त पौड़ी।

हमारो मीत सिखाई, हम हर स्यों प्रीत लागी। हर हम गावे हर हम बोले, और द्वितीया प्रीत हम त्यागी। मन मोहन मोरो प्रीतम राम, हर परमानंद बैरागी। हर देखे जीवत है नानक, एक निमुख पलो मुख लागी। राग मलार महला पंजवा, चौपदे कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिध नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुन लावो भोग हर राए। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी ओ आया तौ मैं सब सुख पाए। संत सवाय ओट गुरपूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लागे आए। मलार महला पंजवां खीरा धार, बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरे तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता भूले बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेले, माता पिता कंठ लाए राखे आनंद सही तब खेले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी, नव निध नाम निदान ग्रह तेरा मन बांछ सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा है दीनी, बारक मुख मांगै सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाह मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवां सगल विधि जो रिया हर करया, तजो सगल अंदेसा कार्य सगल अरंभ्यो घर का ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी, भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया, मीत साजन मेरे पए सुहेले प्रभ पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पए आनंदा गुर कार्ज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ न जाई दूरे। मलार महला पंजवां राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमै बो जोनी टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंघै कथ सागर बिरथा कथत हम तरते, शिव बिरंच असुर सुर जेते काल अग्न मैं जरते। नानक सरन चरण

बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ, बरस प्यारे मन सधारे, होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ। हम तेरी धर स्वामिया मेरे, तू क्यों मनो बिसारे, स्त्री रूप चेरी की न्याई, सोभ नहीं बिन परतारे, बिनो सुनियो जब ठाकर मेरा, बेग आयो कृपा धारे, कहो नानक मेरो बनियो सुहागो, पत सोभा पले आचारे। मलार महला पंजवा, प्रीतम साचा नाम ते आए, दुख दर्द बिनसै भव सागर, गुर की मूर्त हृदय बसाए रहाओ। दुश्मन हते दोखी सब व्यापे, हर शरण आई आया, रख न हारे हाथ दे राखे, ओ नाम पदार्थ पाया। कर कृपा किल विख सब काटे, नाम निर्बल मन ली दिया, गुण निधान नानक।

प्रेम भगत अपनो नाम दीजै, दयाला अनुग्रह धारे रहाओ, सिमरो चरण तुहारे प्रीतम, हृदय तुहारी आसा, संत जना पै करो बेनती, मन दर्शन की प्यासा, बिशरत मरण जीवन हर मिलते, जन को दर्शन दी जय, नामाधार जीवन तन नानक, प्रभ मेरे कृपा की जय। मलार महला पंजवा। आबे अपने प्रीतम स्यो बने आई, राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ, एक पल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नमै निध पाई, अदोत भयो पूर्ण भावी को, भेटे संत सहाई, सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई, तरयो संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण ते आई। मलार महला पंजवा। कान हर बरस सगल जगशाया, भय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहाओ, मिटे कलेस तृष्ण सब पूजी, पार ब्रह्म अंत्याया, साध संग जन मर निवारे, बहुर न कथूं ताया, मन तन नाम निरंजन रातो, चरण कमल लिवलाया, अंगीकार कियो प्रभ अपने, नानक दास शरणाया। मलार महला पंजवा। बिशरत क्यों जीवन ओए जीवन, बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन, चितह उलास आस मिल बेकी, चरण कमल रस पीवन रहाओ, जिन कौ प्यास तुम्हारी प्रीतम, तिन कौ अंतर नाही, जिन कौ बिसरै मेरो राम प्यारा, से मुए मर जाही। मन तन रव रहया जगदीशर, पेखत सदा हजूरे, नानक रव रहयो सब अंतर, सर्ब रहया पर पूरे। मलार महला पंजवा। हर कै भजन कौन कौन ना तारे, खग तन मीन तन मृग तन ब्राह तन, साधु संग उधारे रहाओ, देव कुल दैत कुल, जख किन्नर नर, सागर उतरे पारे, जो जो भजन करे साधु संग, ताके दुख बिदारे, काम क्रोध महाबिखिया रस, इनते पै निरारे, दीन दयाल जपै करना मैं, नानक सद बलिहारे। मलार महला पंजवा। आज मैं बैस्यो हर हाट, नाम रास सांझी कर जन स्यो, जाओ न जमकै घाट रहाओ, तार अनुग्रह पार ब्रह्म राखे, ब्रह्म के खुले कपाट, बेसुमार साहो प्रभ पाया, लाह चरण निदखाट, शरण गही अचत बनासी, किल विख काढ़े है शांट, काल कलेस मिटे दास नानक, बहुर न जोनी माट। मलार महला पंजवा। बहुबिद माया मोहे हैरानो, कोट मदे को बिरला सेवक, पूर्ण भगत चिरानो रहाओ, इत उत डोल डोल श्रम पायो, तन तन होत बिरानो, लोग दुराए करत ठगियाई, होतो संग न जानो, मृग पंखी मीन दीन नीच, ए संकट फिर आनो, कहो नानक पाहन प्रभ तारो, साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवा। दुष्ट मोए बिख खाई री माई, जिसके जी तिन ही रख लीने, मेरे प्रभ को कृपा आई रहाओ, अंतर जामी सब मैं वरतै, तापो कैसा पाई, संग सहाई छोट ना जाई, प्रभ दी सह सबनी ठाई, अनाथा नाथ दीन दुख पंजन, आप लिए लड़ लाई, हर की ओट जी वै दास तेरे, नानक प्रभ शरणाई। मलार महला पंजवा। मन मेरे हर के चरण रवीजै, दर्स प्यास मेरो मन मोहयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ, खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, तार अनुग्रह स्वामी मेरे, नाम हरस पीजै, त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल तो कृपा की जय, कर गै ले हो दास अपने को, नानक अपनों की जय।
ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਗਤ ਵਛਰ ਬਿਰਦਾਇਓ ਨਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਚਰਨ ਤਲ ਦੀਨੇ ਆਪਣਾ ਜਸ ਵਰਤਾਇਓ ਰਹਾਓ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਨੋ ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਦਇਆ ਜੀਅਨ ਮੈਂ ਪਾਇਓ ਕੰਠ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਰਾਖਿਓ ਤਾਤੀ ਵਾਹੁ ਨ ਲਾਇਓ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਭ੍ਰਮ ਪਾਓ ਮੇਟ ਸੁਖਾਇਓ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਦਾਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਨਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਨ ਆਇਓ ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪਦੇ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੈ ਗੁਣੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਵਿਸਰ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਓ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਧਿਆਈਐ ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਿਟੋ ਮਲ ਜਾਓ ਗੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਅੰਦ ਨਿਤ ਗਾਓ ਗੁਰ ਕੀ ਧੂੜ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਮਾਨ ਗੁਰ ਬੋਇਥ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਗੁਰ ਭੇਟਿਐ ਨਾ ਹੋਏ ਜੋਨ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਜਨ ਪਾਏ ਜਾਂ ਕਉ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਆਏ ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰ ਆਧਾਰ ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਵਰਤਣ ਗੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿਆ ਮਿਲਾਏ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾ ਤੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰਾ ਰੰਗਰਾਤੇ ਰਹਾਓ ਗਾਵਣ ਸੁਣਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸਾਜ ਸਮਾਣਾ ਜਬ ਜਬ ਜੀਵੈ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਓ ਦੁਖ ਸੋ ਕਰਤੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਏ ਭਾਣੈ ਬਖਸ ਭਾਣੈ ਦੇ ਸਜਾਏ ਦੁਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਸੁਣਿਆ ਵਖਾਣੈ ਸੇਈ ਭਗਤ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਣੇ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੇ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾ ਦਇਆਲ ਮੇਘ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਸਗਲੇ ਜੀ ਜੰਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਕਾਰਜ ਆਏ ਪੂਰੇ ਰਾਸੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਇਆ ਐਥੈ ਉਥੈ ਨਿਭੈ ਨਾਲ ਰਹਾਓ ਦੁਖ ਪੰਨਾ ਪੈ ਪੰਜਨ ਹਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਜੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ ਕਾਲ ਗਵਾਇਆ ਕਰਤਾ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਤਿਸਨੋ ਜਾਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ ਰਾਖੇ ਸਭ ਜੰਤ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਨਿਤ ਨਿਤ ਭਗਵੰਤ ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਵੇ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਤਿਸਕਾ ਬੋਲਾਇਆ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਸਰਨਾਈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਮਾਨ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਦੁਖ ਦਰਦ ਸਭ ਜਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਦ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਸਾ ਲਾਹੇ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮਨ ਚੰਦੇ ਫਲ ਪਾਏ ਰਹਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜਿਆ ਵਰਨਾ ਕੋਏ ਗੁਰਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮਾਇਆ ਬਿਖ ਫਿਰ ਬਹੁਣ ਨਾ ਚਾਖੈ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਚੈ ਨਾਏ ਸਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਸਭ ਸਾਚੀ ਸੋ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਗੁਰਸੰਗ ਰਾਚੀ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਹ ਮਨ ਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਚਰਨ ਨਿਵਾਸੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚ ਅਰਦਾਸ ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਤੀ ਜਾਏ ਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਮਨਾਰ ਪ੍ਰੇ ਦਿਆਰ ਸਿਉ ਰੰਕੀਆ ਕਿਨੋਰੀ ਸਗਲ ਸਿੰਗਾਰ ਤਜਿਓਰੀ ਸਗਲ ਬੇਕਾਰ ਧਾਵ ਤੋਂ ਅਸਰ ਥੀਆ ਰਹਾਓ
ऐसे रे मन पाए कै आप गवाए कै कर साधन स्यो संग बाजे बजे मृदंग अनाहद को कलरी राम नाम बोले मदर बैन अत सुहिया ऐसी तेरे दर्शन की सोभ अत्यापार प्रया मोग तैसे ही संग संत बने पाव उतार नाम पने राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया जन नानक प्रियो प्रीतम थिया। मलार महला पंजवा मन कने प्रमे बने उमकत रस चल प्रमिलबे की चाह रहाओ त्रै गुण माई मोहे आई कहो बेदन काहे आने उपाव सगर किए न दुख सा कैलाहे पज सरन साधु नानका मिल गुण गोबिंद गाहे। मलार महला पंजवा प्रेकी सोब सुहावनी निकी हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी निकी रहाओ तुनत ललत गुनाग अनक पांत बहुबिद रूप दिखावनी निकी गिर तर थल जल पवन भरपुर कट कट लालन छावनी निकी साध संग रामैया रस पायो नानक जाकै पावनी निकी। मलार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल हृदय अंतर तारे रहाओ दर्श सफल्यो दर्श पेख्यो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे बिसम बिसम बिसम पई अड़ग कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे। मलार महला पंजवा बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल भाग रहाओ संत संगे मन पर फड़ै मिल मेघ तर सुहाग कन कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोह मिल संत नानक जागया। मलार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ कै संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पहे दयाल बिनस गए बिखे जंजाल साध जना कै चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत। मलार महला पंजवा कन गरजत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन। मलार महला पंजवा हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल रहाओ प्राण नाथा नाथ सखे दीन दर्द निवार हे समर्थ गम पूर्ण मोहे मया तार अंधकूप महापयान नानक पार उतार। मलार महला पहला अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद चकवी नैन नींद न चाहे बिन पिर नींद न पाई सूर चरै प्रयो देखे नैनी निम निम लागे पाई फिर पावे प्रेम सिखाई तिस बिन कड़ी नहीं जग जीवा ऐसी प्यास तसाई रहाओ सरवर कमल किरण आकाशी बिकसै सह सुभाई प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी ज्योति ज्योत मिलाई चात्रक जल बिन प्रयो प्रयो टेरै बिलप करे बिल लाई कन हर कोर दसो दिस बरसै बिन जल प्यास न जाई मीन निवास उपजै जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई खेन तिल रह न सकै पल जल बिन मरण जीवन तिस्ताई तन वांडी पिर देश निवासी सच्चे गुरपै शब्द पठाई गुण संग्रह प्रभृदय निवासी भगत रति हर खाई।
प्रयो प्रयो करे सब ही जेती, गुर पावे प्रयो पाई, प्रयो नाले सद ही सच संगे, नदरी मेर मिलाई। समय जियो जियो है सोई, कट कट रहा समाई, गुर प्रसाद कर ही प्रगासिया, सहजे सहि समाई। अपना काज सवारो आपे, सुखदाते गोसाई, गुर प्रसाद कर ही पिरपाया, तौ नानक तप्त बुझाई। मलार महला पहला, जागत जाग रह गुर सेवा, बिन हर मैं को नाही, अनक जतन कर रहन ना पावे, आच काच ढर पाही। इस तानो तन का कहो गर्भ कैसा, बिनस्त बार न लागे बवरे, हम मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहाओ। जय जगदीश प्रभु रखवारे, राखे परखे सोई, जेती है तेती तुझ ही ते, तुम सर्यवर ना कोई। जियो पाए जुगत हथ कीनी, आपे गुरमुख अंजन, अमर अनाथ सर्ब सिर मोरा, काल बेकाल परम पै खंजन। कागद कोट एहो जग है बपरो, रंगन चिहन चतराई, नानी सी बूंद पवन पत खोवे, जन्म रह खिनताई। नदी उपकंठ जैसे कर तरवर, सरपन कर कर माही, उल्टी नदी कहां कर तरवर, सरपन डसे दूजा मन माही। गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी, बिखिया गुरमत जारी, मन तन हेम पय सच पाया, हर की भगत निरारी। जेती है तेती तुद जाचै, तू सर्ब जिया दयाला, तुमरी शरण परे पत रखो, साच मिलै गोपाला। बांदी तंद अंध नहीं सूजै, बदक कर्म कमावै, सतगुर मिलै ता सूजस बूजस, सच मन ज्ञान समावै। निर्गुण देहे साच बिन साची, निर्गुण देहे साच बिन काची, मैं पूछो गुरे अपना, नानक सो प्रभ प्रभु दिखावे, बिन साचे जग सुपना। मलार महला पहला, चात्र कमीन जल ही ते सुख पावे, सारंग शब्द सुहाई। रैन बबीहा बोल्यो मेरी माई रहाओ, प्रेस्यों प्रीत ना उल्टे कबहू, जोते पावे साई। नींद गई हम मैं तन थाकी, सच मत हृदय समाई। रूखी बिरखी उडो भूखा, पीवा नाम सुभाई, लोचन तार ललता बिललाती, दर्शन प्या सिरजाई। प्रे बिन सिंगार करी, तेता तन तापै, कापरे अंग ना सुहाई। अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सका, बिन मिले नींद ना पाई। पिर नजीक ना बूझै बपड़ी, सतगुर दिया देखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया, तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुझ ते मन मानिया, कीमत कहन ना जाई। मलार महला पहला, अष्टपदियां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अखली

हराओ सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कह तकिया साचै तान, नाम समारस रूड़ी बाण, थै पावे दरलै स्पिराण। ऊंडा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना उची तार, निज करवासा तह मगना चल नहार। जित कर वसै तू है बिद जाने, बीजो महल ना जापै, सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग दग ब्याशा पै। करण पलाव करै बिल लातो, बिन गुर नाम ना जापै, पल पंकज मैं नाम छडाए, जे गुर शब्द संयापै। एक मूर्ख अंधे मुक्त गवार, एक सतगुर कह पै नाम आधार, साची बाणी मीठी अमृत तार, जिन पीती तिस मुख द्वार। नाम पै पाए हृदय वसाही, गुर करनी सच बाणी, इंद वरसै तरत सुहावी, कट कट जोत समाणी। कालर बीजस दुरमत ऐसी, निगुरे की निशानी, सतगुर बाजो कोर अंधारा, डूब मोए बिन पानी। जो किश कीनो सो प्रभु रिजाए, जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए। हुक्मे बांधा कार कमाए, एक शब्द रचै सच समाए। चहो दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा, चहो दिस नाम पतालं। सब मैं शब्द वरतै प्रभ साचा, कर्म मिलै बयालं। जामन मरना दिसै सिर उबो, खुदया निंद्रा कालं। नानक नाम मिलै मन पावै, साची नदर रसालं। मलार महला पहला, मरण मुक्त गत सार ना जानै, कंठे बैठी गुर शब्द पछानै। तू कैसे आड़ फाथी जाल, अलख ना जा चर दै समाल। रहाओ एक जी कै जिया खाही, जल तरती बूढ़ी जल माही। सर्व जी की ये प्रतपानी, जब पकड़ी तब ही पछतानी। जब गल फास पड़ी अत पारी, ऊंडना सांकै पंख पसारी। रस चूगै मन मुख गावार, फाती छूटै गुण ज्ञान विचार। सतगुर सेव टूटै जमकाल, हृदय साचा शब्द संभाल। गुरमत साची

सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे, पंज सह दाना खाए, डकै फूकै केहे उड़ावै, साहे गए पछताए। अंधी फूक मुई देवानी, खस मिट्टी फिर पानी, अद गुल्ला चिड़ी का चुगन, गैन चढ़ी बिल्लाए। खसमै भावै ओहा चंगी, जे करे खुदाए खुदाए। सकता सीहो मारे सह मेरे आं, सब पिछे पै खाए, ओहे सताना कुरै न मावै, साहे गए पछताए। अंधा किसनो बुख सुनावै, खसमै मूल ना पावै, अग स्यो प्रीत करे अक तिड्डा, अग डाली बै खाए। खसमै पावै ओहो चंगा, जे करे खुदाए खुदाए, नानक दुनिया चार दे।

मासो ही मासी उपजै मासो सबो साक सतगुर मिलिया हुक्म बुझिया ताको आवै रास आप छुटे न छुटी नानक बचन विनाश महला पहला मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने गेंडा मार होम जग किए देवत्यां की बाणे मास छोड़ बैस नक पकड़े राती मान सखाने फड़ कर लोका नो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंधे से क्यों कहिए नानक अंधे से ओ क्या कहिए कहे न कहे आबूजे अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मांस ना खाही स्त्री पुरख है जानिस मेला ओथे मंद कमाही मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान का सूझै नाही चतर कहा वह पांडे बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा जी जंत सब मासो होए जी लया वासेरा अपख पख पख तज छोड़ अंध गुरु जिन केरा मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान कछ सूझे नाही चतर कहा वै पांडे मास पुराणी मास कते भी चह युग मास कमाना जज काज भी आहे सुहावे उथे मास समाना स्त्री पुरख निपजै मासो पातशाह सुल्ताना जे ओए दिसै नरक जांदे ता उनका दान ना लेना देंदा नरक सुर्ग लेंदे देखो एह तिंगाना आप न बुझै लोक बुझाए पांडे खरा सियाणा पांडे तू जाने ही नाही किथो मास्यो पन्ना तोयो अनक मादक पाहा तोयो त्रिपवन गन्ना तोवा आखे हाँ बो बिधाचा तो वै बहुत बेकारा एते रस छोड़ हो वै सन्यासी नानक कह विचारा पौड़ी हाउ क्या आखा एक जीव तेरा अंतरा किन्ही पाया सच्चा शब्द विचार सेतु जी माए समाया एक भगवा वेशकर परम देवन सतगुर के ना पाया दे दसंतर पव थके तुद अंदर आप लुकाया गुर का शब्द तन है कर चानने आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमती सच समाया आवा गुण बजारिया बाजार जिनी रचाया एक थिर सच्चा सलाहना जिन मन सच्चा पाया सलोक महला पहला नानक माया कर्म बिरख फल अमृत फल वेस सब कारण करता करे जिस खवाले तिस महला दूजा नानक दुनिया किया वड़ियाइया अग्गी से तीजाल इनी जली ना विसारे आयक ना चलिया नाल पौड़ी सिर सिर होए नबेड़ हुक्म चलाया तेरे हथ नबेड़ तू है मन पाया काल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाणा कन चढ़िया नचसी सतगुर बोथ बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे पड़हार अंदर पक्षी।

हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे, हरे राम नाम तन माल, जा को भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, हौ बलबले हौ बलबले, जन नानक हर जप पही, निहाल निहाल निहाल। कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी कीचे लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कृपीस रहाओ। हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे जप जपो जगदीश, तुमरे जन राम जपे ते उत्तम, तिन कहो हाँ कुम कुमे कुम कुम जीस। हर तुम वड वडे वडे वड उचे, सो करे जे तुद पावीस, जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस। कानड़ा महला चौथा, पज राम मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम, सतसंगत मेल पज राम, बड हो पाग मथाम रहाओ, जित ग्रह मंदिर हर होत जास, तित कर आनंदो आनंद, पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे, हरे पज राम राम राम। सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता, सब तू तू तू राम राम राम, जन नानको शरणागति देहो गुरमति, पज राम राम राम। कानड़ा महला चौथा, सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट, पज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट रहाओ। खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट, कर पेख ना पाईए हर ब्रह्म जोग हर पाईए, सतसंगति उपदेश गुरु गुर संत जना, गुर खोल खोल कपाट, तू अपरंपर स्वामी आता गाहा, तू भरपुर रया जल थले, हर एक एको एक एक है हर थाट, तू जाने सब विद बूझे आपे, जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे कट हर काट। कानड़ा महला चौथा, जप मन गोविंद माधो, हर हर आगा दो, मत गुरमत हर प्रवला दो, तुर हो लिखे लिला दो रहाओ, बिख माया संच बहु चित बिकार, सुख पाइये हर पज संत संत संग दी, मिल सत गुरु गुर साधो, ज्यो शोहे पारस मनूर पए कंचन, त्यो पतत जन मिल संगति, सुध होवत गुरमती सुधादो, ज्यो काष्ट संग लोहा बहु तरता, त्यो पापी संग तरे, साध साध संगति, गुर सतगुरु गुर साधो, चार वर्ण चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुर नानक, सो आप तरे कुर सगल तरा दो। कानड़ा महला चौथा, हर जस गावो भगवान, जस गावत पाप लहान, मत गुरमत सुन जस कान, हर हो कृपान रहाओ। तेरे जन त्यावै एक मन एक चित, ते साधु सुख पावै, पज हर हर नाम निधान, उस्तत करह प्रभ तेरिया, मिल साधु साजना गुर सतगुरु भगवान, जिनके हृदय तू स्वामी, ते सुख फल पावै, ते तरे पव सिंध, ते भगत हर जान, तिन सेवा हम लाए हरे, हम लाए हरे, जन नानक के हर तू।

तुम जानो हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभ का, कहो तिन कहो क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प्या रापो कोई मिले प्रभ मिल थे। हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम तुच्छ कर कर वर्ण थे, हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे, जन नानक के प्रभ समर्थ थे, कल्याण महल्ला चौथा। मेरे मन जप हर गुना कथ सुनथई, धर्म अर्थ सब काम मुख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ। सो हर हर नाम त्याव हर जन, जिस वट भाग मथई, जै दरगे प्रभ लेखा मांगे, तै छूटे नाम ते आए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हम मैल लग थई, गुर तार कृपा हर जल ना वाए, सब के लिख पाप कथई। जन कह हृदय अंतर प्रभ स्वामी।

हर हर प्रभ हर जप्यो जगन नथी, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पाथर रख बुड़ थई कल्याण महला चौथा। हमरी चितवनी हर प्रभ जान है, और कोई निंद करे हर जन की, प्रभता का कहया एक तल नहीं मानै रहाओ। और सब त्याग सेवा कर अचुत, जो सब ते ऊंच ठाकर भगवान है, हर सेवा ते काल जोहे ना सकै, चरणी आए पवै हर जन। जा कौ राख ले मेरा स्वामी, ता कौ समत दे पै कान, ता कौ कोई अपर ना सकै, जा की भगत मेरा प्रभ मान। हर के चोज विडान देख जान, जो खोटा खरा एक निमख पछान, ता ते जन कौ आनंद भया है, रिद्ध सुध मिले खोटे पछतान। तुम हरदा ते समर्थ स्वामी, एक मांगो तुझ पासो हर दान। जन नानक कौ हर कृपा कर दीजै, सद बसै हृदय मुहे हर चरान। कल्याण महला चौथा। प्रभ की जय कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे, हम तुमरी करो नित्यास प्रभ, मोहे कब गल लावेंगे रहाओ। हम बारक मुक्त एआन पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित पावेंगे। जो हर स्वामी तुम दे हो, सोई हम पावेंगे, मोहे दूजी नाही ठौर जिस पै हम जावेंगे। जो हर पावे भगत तिन्ना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत में लाए ज्योत रल जावेंगे। हरे आपे होए कृपाल, आप लिवलावेंगे, जन नानक शरण द्वार हर लाज रखावेंगे। शक्का एक कल्याण पोपाली महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, दुख निवारण नारायण, सगल भगत जाचे सुख सागर, पावने दरन हर चिंता मणे रहाओ। दीन दयाल जगदीश दमोदर, हर अंतरजामी गोबिंदे, ते निरपो जिन श्री राम ते आया, गुरमत मुरार हर मुकंदे, जगदीशर चरण सरन जो आए, ते जन पावनित पार परे, भक्त जना की पैज हर राखै, जन नानक आप हर कृपा करे। राग कल्याण महला पंजवा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हमारे एह कृपा की जय, आलम करंद चरण कमल स्यो, मन फेर फेर दी जय रहाओ। आन जला स्यो काज ना कछुऐ, हर बूंद चातरक कौ दी जय, बिन मिलबे नाही संतोखा, पेख दर्शन नानक जी जय। कल्याण महला पंजवा, जाचक नाम जाचै जाचै, सर्वतार सर्व के नायक, सुख समूह के दाते रहाओ। केती केती मांगन मांगे, भावनिया सो पाइयै, सफल सफल सफल दर्शरे, परस परस गुण गाइयै, नानक तत तत स्यो मिलियै, हीरे हीर बिधाइयै। कल्याण महला पंजवा, मेरे लालन की शोभा, साध नवतन मन रंगी शोभा रहाओ। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, भगत दान जस मंगी, योग ज्ञान ध्यान सेख नागै, सगल जपै तिरंगी। कहो नानक संतन बलिहारै, जो प्रभ के सद संगी। कल्याण महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तेरा मान हर हर मान, नैन बैन श्रवण सुनिए, अंग अंगे सुख प्राण रहाओ। ईत योत दह दिस रवेओ, मेरत ने समान, जत कथा तत पेखिए, हर पुरख पत प्रधान। साध संग ब्रह्म पै मिटे, कथे नानक ब्रह्म ज्ञान। कल्याण महला पंजवा, गुण नाद तोनिया नंद बेद, कथत सुनत मुन जना, मिल संत मंडली रहाओ। ज्ञान ध्यान मान दान, मन रसक रसन नाम जपत, तै पाप खंडली। जोग जुगत ज्ञान भुगत, सुरत शब्द तत् बेते, जप तप अखंडली। ओत पोत मिल जोत नानक, कछु दुख ना डंडली।
कल्याण महला पंजवा कौन बेता की कहां करो तरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे जरो रहाओ बिशन महेश सिद्ध मुन इंद्रा कै दर्शन परो काहू पै राज काहू पै सुरगा कोट मदे मुक्त कहो कहो नानक नाम रस पाई है साधु चरण गहो कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जोन कल काल जाल दुख विनाशन हर रखे रहाओ नाम तारी शरण तेरी प्रभ दयाल टेक मेरी अनाथ दीन आसवंत नाम स्वामी मनै मंत तुझ बिना प्रभ किशु ना जानू सर्व युग मैं तुम पछानू हर मन बसे निस बसरो गोबिंद नानक आसरो कल्याण महला पंजवा मंत्र जापिए भगवान गुर पूरे सो प्रसन्न पए सदा सुख कल्याण रहाओ सर्व कार्य सिद्ध पए गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुखकाल कर कृपा प्रभ मेरे आ करो दिन रहन सेव नानक दास शरणागति हर पुरख पूर्ण देव कल्याण महला पंजवा प्रभ मेरा अंतर जामी जान कर कृपा पूर्ण परमेसर निहचल सच शब्द निशान रहाओ हर बिन आना कोई समर्थ तेरी आस तेरा मंतान सर्व कटा के दाते स्वामी देह सो पहरन खान सुरत मत चतराई सोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन कल्याण करन प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ साध संग जपन संग जमकाल तिस ना खावनो मुक्त जुगत अनक सुख हर भगत लवे ना लावनो प्रभ दर्श लुब्ध दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो कल्याण महला चौथा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा रम रामो सुन मन पीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाओ काष्ट मैं ज्यो है बैसंतर मत संजम काढ़ कढ़ीजै राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ़ लई जै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुई जै कृपा कृपा कृपा कर प्यारे गुरसबदी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सबदा हर रस की जै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा ली जै सतगुर अगम अगम है ठाकर पर सागर भगत करी जै कृपा कृपा कर दीन हम सारंग एक बूंद नाम मुख दी।

रस रसक गटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड कंचन कर तरीजै। मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा। राम गुरपारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर या तफीके, मिल सतगुर पारस की जय। रहाओ सुरग मुकत बैकुंठ सब बांछ, नित आसा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे, मिल दर्शन।

ठाकर के जन अलिप्त है मुक्त, ज्यो मुर्गाई पंख न पीजय, चंदन वास भयंगम वेड़ी, के मिलिय चंदन लीजय, काड खड़ग गुर ज्ञान करारा, विक्षेद छेद रस पीजय, आन आन समदा बहुकीनी, पल बैसंतर पस्म करी जय, महायुगर पाप साक्त नरकीने, मेरे साधु लुकी दी जय, साधु साधु साजनी के जनंतर नाम तरी जय, परस निपरस पय साधु जन, जन हर भगवान दखी जय, साक्त सूत बहु गुरु जी भरिया, क्यों करता अंत नी जय, तंत सूत किशनिक सह नाही, साक्त संग ना की जय, सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवि जय, अंतर रतन जिवे हर माणक, गुर कृपा ते ली जय, मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिले मिली जय, नानक मेल मिलाए गुरपूरा, जन को पूर्ण दी जय, कल्याण महला चौथा, रामा राम राम राम रवि जय, साधु साधु साजनी के मिल साधु हर रंग की जय, रहाओ जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करी जय, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थम्मन कौ थम दी जय, बसदा तला तला सभी ऊपर, मिल साधु चरण रुली जय, अति उत्तम अति उत्तम होवो, सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय, गुरमुख ज्योत भली सिवनी की, आन पानी सख्त भरी जय, मैन दंत निकसै गुरबचनी, सार चब चब हर रस पी जय, राम नाम अन गुरु बहु किया, गुर साधु पुरख मिली जय, गुण राम नाम बिसीरन की है, हर सगल पवन जस दी जय, साधु साधु साध मन प्रीतम, बिन देखे रह ना सकी जय, ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खिन जल बिन फूट मरी जय।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागणहारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझै अंध ना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेसर करमी मिलै वडाई। दिन दिन आवै तिल तिल शीजै माया मोह कटाई बिन गुर बूडो ठौर ना पावै जब लग दूजी राई। अहनस जियां देख संभाले सुख दुख प्रभ कमाई कर्महीन सच भीखिया मांगै नानक मिलै वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया।

जिसकी रचना सोबित जान है गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रस कमल बेगासे सस्कर सूर समाया काल विध्वंस मनसा मनमारी गुर प्रसाद प्रपाया अत रस रंग चलू लै राती दूजा रंग ना कोई नानक रसन रसाए राते रव रया प्रभ सोई। प्रभाती महला पहला बारह मैं रावल खप जावै चौछे मैं सन्यासी जोगी कापड़िया सिर खूथे बिन शब्द है गल फासी शब्द रते पूरे बैरागी ओ हठ हस्त मैं पीख्या जाची एक भाए लिवलागी रहाओ ब्राह्मणवाद पढ़े कर किरिया करनी कर्म कराए बिन बूझे किछ सूझे नाही मनमुख विछड़ दुख पाए शब्द मिले से सुचाचारी साची दर गए माने अन दिन नाम रतन लिव लागे जो जुग साज समाने सगले कर्म धर्म सुच संजम जप तप तीर्थ शब्द वसे नानक सतगुर मिले मिलाया दुख प्राहित काल नसे। प्रभाती महला पहला संतां की रेण साध जन संगत हर कीर्त तरतारी कहां करे बपरा जम डर पै गुरमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवै साध मना रहाओ गुर उपदेश साच सुख जा कहो क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रतन पदार्थ खोजत गुरमुख लही है चीने ज्ञान ध्यान तन साचो एक शब्द लिव लावै निरालंब निरहार निह केवल निरपव ताड़ी लावै सायर शब्द भरे जल निर्मल उल्टी नाम तरावै बाहर जातो ठाक रहावै गुरमुख सहज समावै सो गिरही सो दासो दासी जिन गुरमुख आप पछानिया नानक कहे अवर नहीं दूजा साच शब्द मन मानिया। राग प्रभाती महला तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख विरला कोई बुझे शब्दे रहा समाई नाम रते सदा सुख पावै सच रह लिवलाई हर हर नाम जपो जन पाई गुर प्रसाद मन अस्थिर होवै अंदन हरस रहा अगाई रहाओ अन दिन भगत करो दिन राती इस जुग का लाहा पाई सदा जन निर्मल मैल न लागे सच नाम चितलाई सुख सिंगार सतगुरु दिखाया नाम वड्डी वड्याई अखुट भंडार भरे कदे तोट ना आवै सदा हर सेवो पाई आपे करता जिसनो देवै तिस वसै मन आई नानक नाम त्याय सदा तू सतगुर दिया दिखाई। प्रभाती महला तीजा निर्गुणी आरे को बख्श लै स्वामी आपे लहो मिलाई तू बेअंत तेरा अंत ना पाया सबदे देहो बुझाई हर जियो तुद विटो बल जाई तन मन अर्पी तुद आगै रखो सदा रहा सरनाई रहाओ अपने पाने विच सदा रख स्वामी हर नामो देह वड़ियाई पूरे गुरते पाणा जापै अंदन सहि समाई तेरे पाणे भगत जे तुद पावै आपे बख्श मिलाई तेरे पाणे सदा सुख पाया गुर तृष्णा अग्न बुझाई जो तू करै सो होवै करते अवर न करना जाई नानक नामै जेवड़े अवर न दाता पूरे गुरते पाई। प्रभाती महला तीजा गुरमुख हरसा लहाया जिन्ना तिन सलाए हर जाता विचों परम गया है दूजा गुर कै शब्द पछाता हर जियो तू मेरा एक सोई तू जपी तुदै सा लाही गत मत तुझते होई रहाओ गुरमुख सा लाहन से साध पायन मीठा अमृत सार सदा मीठा कदे ना फीका गुरसब दी विचार जिन मीठा लाया सोई जाने तिस विटो बल जाई शब्द सलाही सदा सुखदाता विचों आप गवाई।

हम गुर राख लिए कृपाले, काम क्रोध से ठाठ ना बनया, गुर उपदेश मोहे कानी सुनया। जै देखो तै महा चंडाल, राख लिए अपने गुर गोपाल। दस नारी मैं करी दुहागन, गुर कया ए रसै बिखागन। इन संबंधी रसातल जाए, हम गुर राखे हर लिव लाए। अहम मेव स्यो मसलत छोडी, गुर कया एह मूर्ख होडी। एह नींगर कर कही ना पाए, हम गुर राख लिए लिव लाए। इन लोगन स्यो हम पहे बैराई, एक ग्रह मैं दोए ना खटाई। आए प्रभ पहे अंचर लाग, करो तपावस प्रभ सरबाग। प्रभ हस बोले किए न्याय, सगल दूत मेरी सेवा लाए। तू ठाकर एहो ग्रहो सब तेरा, कहो नान गुर किया नबेरा। प्रभाती महला पंजवा, मन मैं क्रोध महा हंकारा, पूजा करे बहुत विस्थारा। कर इशनान तर चक्कर बनाए, अंतर की मल कभी ना जाए। इत संजम प्रभ की नहीं ना पाया, भगवती मुंद्रा मन मोहया माया। रहाओ पाप कर है पंचा के बसरे, तीर्थ नाए कहे सब उत्तरे। बहुर कमावे होए निसंक, जम पर बांध खरे कालंक। कुंगर बांध बजा वै ताला, अंतर कपट फिरै बेताला। वर्मी मारी साप न मुआ, प्रभ सबके जाने जिंतु किया। पूवर ताप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया गृह ते नस्ता। देश छोड़ पर देश सहताया, पंच चंडाल नाले ले आया। कान फराए हराए टूका, कर कर मांगे त्रिपतावन ते चूका। बनता छोड़ बद नदर पर नारी, वेसना पाई है महा दुखियारी। बोले नाही होए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाई है जोनी। अन्न ते रहता दुख देही सहता, हुक्म ना बूझे व्यापिया ममता। बिन सतगुर करे ना पाई परम गते, पूछो सगल बेद सिमरते। मन मुख कर्म करे आ जाई, ज्यो बालू कर ठौर ना ठाई। जिसनो पहे गोबिंद दयाला, गुर का बचनो तिन बांध्यो पाला। कोट मदे कोई संत दिखाया, नानक तिन कै संग तराया। जे होवै भाग तां दर्शन पाई है, आप तरै सब कुटुंब तराई है। रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किलबिक सब काटे। धर्म राय के कागर फाटे, साध संगत मिल हर रस पाया। पार ब्रह्म रिदमाए समाया, राम रमत हर हर सुख पाया। तेरे दास चरण सरनाया। रहाओ चूका गौण मिटिया अंधियार, गुर दिखलाया मुग द्वार। हर प्रेम भगत मन तन सद राता, प्रभु जनाया तभी जाता। घट घट यंत्र रव्या सोए, तस्मिन बीजो नाही कोए। बेर बैर विरोध शेदे पै परमा, प्रभ पुन आत्मै कीने धर्मा। महातरंग ते कांडै लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा। जप तप संजम नाम संभालिया, अपने ठाकर नजर निहालिया। मंगल सुख कल्याण तिथाई, जय सेवक गोपाल गुसाई। प्रभ सो प्रसन्न पए गोपाल, जन्म जन्म के मिटे बेताल। होम जग उर्दता पूजा, कोट तीर्थ इशनान करी जा। चरण कमल निमख हृदय तारे, गोविंद जपत सब कार्य सारे। ऊचे ते ऊचा प्रभ थान, हर जन पावे सही ध्यान। दास दास की बांछो तूर, सर्व कला प्रीतम भरपूर। मात पिता हर प्रीतम नेरा, मीत साजन परवासा तेरा। कर गए लीने अपने दास, जब जीवे नानक गुणतास। विभास प्रभाती बाणी, भगत कबीर जी की एको अंकार। सदगुर प्रसाद मरण जीवन की शंका नासी, अपन रंग सहज परगासी।
ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਰਹਾਉ ਜਹ ਆਨੰਦ ਦੁਖ ਦੂਰ ਪਿਆਨਾ, ਮਨ ਮਾਨਕ ਲਿਵ ਤਤ ਲੁਕਾਨਾ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਵਾ ਸੋ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਜੋ ਇਵ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸਹਿ ਸਮਾਣਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਿਲ ਬਿਖ ਗਏ ਖੀਣਾ, ਮਨ ਭਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਲੀਣਾ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਅੱਲਾਹ ਏਕ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ, ਅਵਰ ਮੁਲਖ ਕਿਸ ਕੇਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ, ਦੋਹ ਮਹਿ ਤਤ ਨਾ ਹੇਰਾ, ਅੱਲਹ ਰਾਮ ਜੀਵੋ ਤੇਰੇ ਨਾਈ, ਤੂੰ ਕਰ ਮੇ ਰੰਮਤ ਸਾਈ, ਰਹਾਓ ਦੱਖਣ ਦੇਸ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲੈ ਮੁਕਾਮਾ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲੈ ਦਿਲ ਖੋਜੋ, ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ, ਬ੍ਰਹਮਣ ਗਿਆਸ ਕਰੈ ਚੌਬੀਸਾ, ਕਾਜੀ ਮਹਿਰ ਮਜਾਨਾ, ਗਿਆਰਹ ਮਾਸ ਪਾਸ ਕੈ ਰਾਖੈ, ਕੈ ਮਹੈ ਨਿਧਾਨਾ, ਕਹਾਂ ਓਡੀਸੇ ਮੱਜਨ ਕੀਆ, ਕਿਆ ਮਸੀਤ ਸਿਰ ਨਾਏ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਕਪਟ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰੈ, ਕਿਆ ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਏ, ਏਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦਾ ਸਾਜੇ, ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮਾਰੇ, ਕਬੀਰ ਪੂੰਗਰਾ ਰਾਮ ਅੱਲਹ ਕਾ, ਸਭ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾਰੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਨਰ ਨਰ ਵੈ, ਪਰੋ ਏਕ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਤਭੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤਰਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਅਵਲ ਅੱਲਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਪੂਲੋ ਭਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬਠਾਈ, ਰਹਾਓ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਸਾਜੀ ਸਾਜਨ ਹਾਰੈ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਕੁੰਭਾਰੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਛ ਹੋਈ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ ਸੋ ਏਕੋ ਜਾਨੈ, ਬੰਦਾ ਕਹੀਐ ਸੋਈ, ਅੱਲਹ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਗੁਰ ਗੁੜ ਦੀਨਾ ਮੀਠਾ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸੰਕਾ ਨਾਸੀ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨ ਡੀਠਾ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ, ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਕਹਿਤ ਹਾਂ, ਤੋ ਕਿਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੈ, ਮੁੱਲਾ ਕਹੋ ਨਿਆਉ ਖੁਦਾਈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਹਾਓ ਪਕਰ ਜੀਓ ਆਨਿਆ ਦੇਹ ਬਿਨਾਸੀ, ਮਾਟੀ ਕਹੋ ਬਿਸਮਿਲ ਕੀਆ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਤ ਲਾਗੀ, ਕਹੋ ਲਾਲ ਕਿਆ ਕੀਆ, ਕਿਆ ਉਜੂ ਪਾਕ ਕੀਆ ਮੋਹ ਧੋਇਆ, ਕਿਆ ਮਸੀਤ ਸਿਰ ਨਾਇਆ, ਜੋ ਦਿਲ ਮੈਂ ਕਪਟ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਾ।

काल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग जय जयवंती महला नावा राम सिमरो यह तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ। सुपने जो तन पछान काहे पर करत मान बारू की पीत जैसे बसदा को राज है। नानक जन कहत बात बिनस जह है तेरो गात छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है। जय जावंती महला नावा राम भज जन्म सिरात है। कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार बिनसत नह लगे बार उरे समगात है रहाओ। सगल परम डार देहे गोविंद को नाम लेहे अंत बार संग तेरा यह एक जात है। बिखिया बिख ज्यो बिसार प्रभ को जस ही ये तार नानक जन कह पुकार अवसर बिहात है। जय जावंती महला नावा रे मन कौन गत होए है तेरी एह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान बिखियन सिंह अत लुभान मत नान फेरी रहाओ। मानस को जन्म लीन सिमरन न निमख कीन दारा सुख पयो दीन पगह परी बेरी। नानक जन कह पुकार सुपने ज्यो जग पसार सिमरत नहे क्यों मुरार माया जा की चेरी। जय जावंती महला नावा बीत जय है जन्म अकाज रे निस दिन सुन कै पुराण समझत न रे अजान काल तो पहुंचो आन कहां जय है पाजरे रहाओ। अस्थिर जो मान

मानो नानक जन एह बखानो जग मैं बिराज रे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद। श्लोक सह स्कृति महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूज सबगल समादं मुख झूठ बिपूखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लिलाटं दोय धोती बस्त्र कपाटं जो जान स ब्रह्मं करमं सब फोकट निश्चय करमं कौ नानक निचौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै ने फलंग तस जनमस जावद ब्रह्म न बिंदते सागरंग संसार स गुर प्रसादी तरह के करण कारण समर्थ है कौ नानक विचार कारण करते वस है जिन कल रखी तार योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं।

कतांच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं करोत अरहंत संग भगवान सिमरन नानक लब्ध्यं अचत तन त्रिगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधव त्रिग स्नेहं बंता बिलास सुत त्रिग स्नेहं गृहार्थ कह साध संग स्नेह साध संग स्नेह सत्यं सुखयं बसंत नानक मिथ्यंत देहं खीणंत बलं वरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आशा आथित भवनं गनंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ देहं तत् आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटंग चंत दोयं लेपनंग रक्त चरमण नवंत द्वारंग पीत रहतंग बाय रूपंग अस्तंभन गोविंद नामंग नय सुमरंत अज्ञानी जानंत अस्थरंग दुर्लभ देह उदरंत साध शरण नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत तोयं अच्युत गुण अज्ञं पूर्णंग बहुलो कृपाला गंभीरंग ऊंचे सर्वज्ञ अपारा प्रत्यापरंग विश्राम चरणं अनाथ नाथे नानक शरणं मिर्गी मिर्गी पेखंत बद्धक परहारेण लखयावद अहो जासर खेण गोपाल नानक रोमना छेदयाते बहु जतन करता बलवंत कारी सिवंत सूरा चतुर्दिश बिखम थान बसंत ऊंचै न समरंत मरणं कदांच होवंत आग्या भगवान पुरख नानक कीटी सास्या करखते शब्दं रतंग हितंग मया कीर्तन कली कर्म कृतवा मिटंत तत्रा गत परम मोहं भगवान रमणं सर्वत्र थान्यं दृष्टत्वं अमोघ दर्शनं बसंत साध रसना हर हर हर हरे नानक प्रयंग जाप जपना कटंत रूपं कटंत दीपं कटंत रव सस्यर नक्षत्र गगनं कटंत बसदा गिर तर से खंडं कटंत ललना सुद प्रात हीतं कटंत कनक मानक माया स्वरूपं नह कटंत केवल गोपाल अच्युत अस्रंग नानक साध जान नह बिलंब धर्मं बिलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं शरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं तर्म लखन नानक जे सो प्रसन्न माधव मृत मोहं अल्प बुद्धियं रचंत बनता विनोद साहं जोबन बहकरम कनक कुंडल बचित्र मंदर सोभंत वस्त्रा इत्यंत माया व्यापतं हे अच्युत शरण संत नानक हो भगवान ए नम जन्मं ता मरणं हरखं ता सोगं भोगं ता रोगं ऊचं ता नीचं नाना सोमूचं राजं ता मानं अभमानं ता हीनं परवर्त मार्गं वर्तन्त विनाशनं गोविंद भजन साध संगेण अस्थरं नानक भगवंत भजनासनं कृपंता हरियं मत तत् ज्ञानं विकसीद बुद्धा कुशल थानं बस्यांत रखियं त्याग मानं बस्यांत रखियं त्याग मानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं अरहंत जन्मं हर दर्शलीना बाजंत नानक शब्द बीणा कहंत बेदा गुणंत गुणिया सुनंत बाला बहुविध प्रकारा दृढ़ंत सुविद्या हर हर कृपाला नाम दान जा चंत नानक दैन हर गुर गोपाला नह चिंता मात पित प्रात नह चिंता कश लोक कै न चिंता बंता सुतमीत प्रवृत माया संबंधन है दयाल एक भगवान पुरख है नानक सर्व जी प्रतपालक है अनित वितं अनित चितं अनित आशा बहुविध प्रकारं अनित हेतं अहं

समन जाओ इस प्रेम की, दम केहो होती साट, रावण होते सो रंकन जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए। जप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब। मूसन मर्म न जानई मर्त हिरत संसार, प्रेम परम न बेदेओ उर्ज्यो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल। जा को प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहू जाहे। लख काटी ऊंचो कनो चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार। मगन पयो प्रे प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। सलोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आज जुगा दी सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर मेरी जात कहो सबको हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिनमन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवे जत पेखों तत सोए। कबीर जा दिन हो मुआ पाछे पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश। कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए, पलो पलो सब को कह बुरो न माने कोए। कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठतावते से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़े टाग पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। कबीर दीन गवाया दुनी से ओ दुनी ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। कबीर जय जय हों फिरे ओ कौतक ठाओ ठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ, आग लगो तेह तौल हारो जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए। कबीर सागत ऐसा है जैसी लक्षण की खान, कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी
ਪਵਨ ਵਹਿ ਹਿਵਤਾਰ, ਜਿਨ ਬਿਲੋਇਆ ਤਿਨ ਖਾਇਆ, ਅਵਰ ਬਿਲੋ ਬਨਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ, ਮੁਸ ਮੁਸਲਾ ਵਹਿ ਹਾਟ, ਏ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਸਹਿਜਨ ਕੀਨੀ ਬਾਰੇ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ, ਕਰੈ ਜੋ ਬਹੁਤੈ ਮੀਤ, ਜੋ ਚਿਤ ਰਾਖੈ ਏਕ ਸਿਉ, ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨੀਤ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਆਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੈ ਕਬੀਰਾ, ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਨਹੀਂ ਗਾਕ, ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਕਬੀਰ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜਾ ਕੋ ਠਾਕਰ ਰਾਮ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ ਆਵੈ ਕੌਨੇ ਕਾਮ। ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ ਸਿਉ ਕੀਏ, ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਭਾਵੈ ਕਰ ਰਮੁੜਾਏ। ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ, ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਸਮਾਹੇ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ, ਪੈਸ ਜੋ ਨਿਕ ਸਜਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਹ ਕਰੋਰ। ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਕਵਨੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਪੋਏ ਗਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਕਬੀਰਾ ਤੁਹੀਂ ਕਬੀਰ, ਤੂੰ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ, ਆਰਾਮ ਰਤਨ ਤਾ ਪਾਈਐ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੈ ਸਰੀਰ। ਕਬੀਰ ਚੰਖ ਨਾ ਚੰਖੀਐ, ਤੁਮਰੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ। ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਕੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹਿ, ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਉਜਲ ਪੈਰੈ ਕਾਪਰੇ, ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਹੇ, ਇਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਂਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰ ਜਰਾ, ਫੂਟੇ ਛੇਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਰ ਗਏ, ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਰਪਾਰ। ਕਬੀਰ ਹਾਰਡ ਜਰੇ।

अपनी करते हुए सो होए। कबीर वैष्णव की कुकर भली सागत की बुरी माए, ओह नित सुने हर नाम जस पाप सहन जाए। कबीर हरना दुबला एहो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर करे पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर हर दी पियारी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिले दोनों वर्ण गवाए। कबीर हर दी पी रतन हरे चून चिहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात वर्ण कुल जाए। कबीर मुक्त दुआ

कबीर माए मुंडोते गुरु की जाते परम ना जाए, आप डुबे चौबे मैं चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट पे निदान सब जा पूछे धर्म राय। कबीर हर का सिमरन छाड़ के पाल्यो बहुत कुटंब, तंदा करता रह गया भाई रहा ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए, सरपन होए क्या उतर जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राख नार, गधी होए क्या उतर पार सह मन चार। कबीर चतराई अत कनी हर जप हिरदय माहे, सूरी ऊपर खेलना ग्रहता ठाहर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जा मुकैये राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कानो, लाख तजा फहराए, या सुख ते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हों फिरयो मांदल कंध चढ़ाए, कोरी कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बीथरे अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीसगी जगतो लंगे जाए। बूढ़ा बंश कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाव ना दीजिए आगे होए सो होए। कबीर जग बांधो जेह जेवरी, तेह मत बंदो कबीर, जह आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो, सो जाई सैना, अज हूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैना। कबीर नैन निहारो तुझ कहो, श्रवण सुनो तो नाओ, बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नर्ग ते मैं रहो, सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह कह कहो कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कुंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया, बरख भरे सरताल, चात्रक जो तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकी जो निस बिछरे आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बेशोरिया, रहोरे संख मजूर, देवल देवल ताहड़ी देसे उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जाका बासा गोर मैं सो क्यों सो वै सुख। कबीर सूता क्या कर है उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोमन होए गो लांबे गोट पसार। कबीर सूता क्या करे बैठा रहो अर जाग, जाके संगते बिछरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ, पेखत ही पोनीत होए पेट जपिए नाओ। कबीर साकत संग ना कीजिए दूरे जाइए भाग, बासन कारो परसिए तौ कछ लागे दाग। कबीरा राम ना चेतेओ जरा पहुंचो आए, लागी मंदिर द्वार ते अब क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो कि नो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एक है सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाय पहुंचे खसम को जो बीच ना खाही कांब। कबीर ठाकर पूजे मोल ले मानहट तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग तार पुले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार।

आठ कबीर काल करंता अब है कारो अब करता सोए ताल पाछे कछु न होएगा जब सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जनतिक देखिया जैसी धोई लाख दिसे चंचल बहुगुना मत हीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध कहो जम ना करे तिस्कार जिन एहो जमुआ सिरजिया सो जपया परवदगार। कबीर कस्तूरी पया पवर पए सबदास ज्यो ज्यो भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर गह गज परयो कुटुंब कै कंठे रह गयो राम आए परे धर्म राय के बिचे तू माताम। कबीर सागते सूकर पला रखे अच्छा गाओ ओ सागत बपरा मर गया कोई ना लह नाओ। कबीर कौडी कौडी जोर कै जोरे लाख करोड़ चलती बार ना कश मिलियो लई लंगोटी तोर। कबीर बैसनो हुआ ता क्या पया माला मेली चार बाहर कंचन बारहा पितर परी पंगार। कबीर रोड़ा होए रहो बाटका तजमन का अपमान ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कबीर रोड़ा

बावन अखर सोध कै हर चरणी चित लाए। कबीर संत ना छाड़ै संत जो कोटक मिले असंत मलिया अगर भुजंगम बेढ़ो ता शीतलता नात जंत। कबीर मन शीतल पाया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन जो आला जग जा रहा सो जन के उदक समान। कबीर सारी सृजन हार की जाने नाही कोय कह जाने अपन तनी कह दास दीवानी होए। कबीर भली पई जो पौ परिया दिशा गई सब पूल ओरा घर पानी पया जाए मिलियो टहलकूल। कबीरा तूर सकेल कै पुरिया बांधी देह दिवस चार को पेखना अंत खेह की खेह। कबीर सूरज चांद कै उदय पई सब देह गुर गोबिंद के बिन मिले पलट पई सब खेह। जह अन पौत है पह नहीं जह पौत है हर ना है। कहो कबीर विचार कै संत सुनो मन माए। कबीर जिनो किशु जानिया नहीं तिन सुख नींद बिहाए हमो जो बूजा बूजना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकारिया पीर पुकारे और लागी चोट मरम की रहो कबीरा ठौर। कबीर चोट सुहेल की कबीर चोट सुहेली सेल की लागत ले ओ सास चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़ा साई ना बैरा होए जा कारण तू बांग देहे दिल ही पीतर जोए। शेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए कबीर जाकी दिल साबत नहीं ता को कहां खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी जे सिमरत दुख जाए दिल में साई प्रगटै बुझै बलंती नाए। कबीर जोर किए कबीर जोरी किए जुल्म है कहता नाव हलाल दफ्तर लेखा मांगिए तब होएगो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचरी जा मैं अमृत लोन हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए मिटे मोह तन ताप हर सोग दाजे नहीं तब हर आपे आप। कबीर राम कहन में भेद है ता मैं एक विचार सोई राम सब कह है सोई कौतकहार। कबीर राम मैं राम कहो कहबे माहे बबेक एका ने कह मिल गया एक समाना एक। कबीर जाकर साधना सेवी है हर की सेवा ना है ते कर मरहट सारखे पूत बसे तिन माए। कबीर गुंगा हुआ बावरा बैरा हुआ कान पावो ते पिंगल पया मारिया सतगुरबान। कबीर सतगुर सूर में बाहया बाण जो एक लागत ही पोए गिर परया प्राकृ जे शेक। कबीर निर्मल बूंदिया कास की पर गई भूम बेकार बिन संगत यो मन नहीं होए गई पठशार। कबीर निर्मल बूंदिया कास की लीनी भूम में लाए अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलिया खुदाए साई मुझसे लर परिया तुझे किर फुरमाई गाए। कबीर हज काबे होए होए गया केती बार कबीर साई मुझ में क्या खता मुखो ना बोले पीर। कबीर जी जो मारे जोर कर कहते है जो हलाल दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो

मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किसू के नाहे, जिन एहो रचन रचाया तिसी मैं समाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर है, कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ कनी ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सिया, चिंत पे आपे दे, नानक सो सा लाही है जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिले गो गाह की, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पही ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ी, जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुभ्र फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबैर सातल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले साजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौ सठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहिन क्यों करो सब कट देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसै, जी में बसै के पियो, जियो पियो बूझो नहीं कट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किश होए ता होए। कबीर जाओ तो है साध प्रम की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के ना खल पही ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजग जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जो ग्रहो करे ता धर्म कर,

फरीदा दिल दत्ता इस दुनी स्यों दुनी ना कितै काम मिसल फकीरां गाखड़ी सो पाई है पूर करम पहले पहरे फुलड़ा फल पी पच्छा रात जो जागन लहन से साई कन्नो दात दाती साहेब संधियां क्या चले तिस नाल इक जागन दे ना लहन इक ना सुत्यां दे उठाल ढूंढें दिए सुहाग को तौ तनकाई कोर जिन्ना ना सुहागनी तिन्ना चाक ना होर सबर मंज कमान ए सबर का निहुणो सबर संदा बाण खालक खता ना करी सबर अंदर साबरी तन ए वै जालेन हुन जी खुदाई दै भेत न किसे देन सबर एहो सुवाओ जे तू बंदा दिड़ करै वध थी वै।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पांगुर प्रसाद सवैये श्री मुखबाक महला पंजवा आद पुरख करतार करण करण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल कट रहो ब्यापे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्ब की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत।

विचार, जगत पिता है सर्व प्राण को आधार, जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार, एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार, अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पार, परे ही ते परे अपरे अपार पार, आपनो पावन कार मंत्र ना दूसरो तार, उपत परलो एक है निमख तो कार, आन नाही संसार उजियारो निर्मर, कोट प्राप्त जाहे नाम लिए हर हर, जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार, एक जिह क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार, सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे, पूर रहो सर मैं आप है निरारे, हार गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है अलख मुरारे, आप ही तारन तारे कुदरत है देखा रे, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार, एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार, सर्व गुण निधानं कीमत ना ज्ञान ध्यानं, ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थानं, मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं, कौन उपमा देओ बड़े ते बड़ानं, जाने कौन तेरो पेओ अलख्या पार देओ, अकल कला है प्रभ सर्व को तानं, जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार, एक जिही क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार, निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी, हर खवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी, गुण गावे बेअंत अंतिक तिल नहीं पासी, जा कह होहे कृपाल सुजन प्रभ तुम्हें मिलासी, तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो, हर गुर नानक जन परसयो, से जन मरण दो थे रहो, सत सत हर सत सत सत्ते सत पणिए, दूसरे अन्न अवर पुरख पौ रतन सुनिए, अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए, जेहे रसन चाखेओ तेहे जन तृप्त आगाए, जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सत्संग ते प्यार, हर गुरु नानक जन परसयो दिन सब कुल कियो उधार, सच सभा दीवान सच सच्चे पै तरयो, सच्चा तख्त निवास सच तपावस करयो, सच सिरजियो संसार आपया पुल ना पुल्लो, रतन नाम अपार कीम न हो पवै अमलो, जे कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिन्हू पाए, हर गुरु नानक जिन परसयो ते बौड़ फिर जोन न आए, कवन योग कवन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिए, सिद्ध साधक ते तीस कोर तिरकी मना परिए, ब्रह्मादिक संकाद से गुण अंत न पाए, अगाव गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए, जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते, हर गुरु नानक जन परसयो ते इत्युत सदा मुक्ते, प्रभ दाताओ दातार परयो जाच के कसरना, मिले दान संतरेन जेह लग पौ जल तरना, बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकर पावै, देहो दर्श मन चाओ भगतेओ मन ठहरावै, बलेओ चिराग अंधियार मैं सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म, सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद, काची देह मोह फुन बांधी सठ कठोर कुचील कुग्यानी, तावत परमत रह

जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान बखियाता अहनिस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देखत दिर जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म कर्म पूरै सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है फुन जानै को तेरा अपार निरपौ निरंकार अकथ कथनहार तुझे बुझाई है परम पूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना डंडकाल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुक्त विचार अहनिस जप धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सिरेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अंत दूजा नामान नाम सोआ पार सार दिनो गुर रिद तार नल कव पारस परस कच कंचना नल कव पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुबास जास सिमरत अन तार जाके देखत दुआरे काम क्रोध ही निवारे जी हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर राज जोग तख्त दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तारन मनुख जन कियो प्रगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंचभूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अग्न देखत गत चरण कवल जास सब विद्मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न राज जोग तख्त दियन गुर रामदास रड जिसे तारयो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सस रिख निस सूर दिन सैल तरु फल फुल दियो सुर नर सप्त समुन्दर के तारयो त्रि पवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर प्रगास कच्चो कंचन पयो शब्द गुर श्रवणै सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणयो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जा तारै पाहण माणक करै ज्ञान गुर कहो बिचारै काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जन परसिया से पस प्रेत सुर नर पए जाम गुरु है वल तने क्या गर्व दिजय जाम गुरु है वल लख बाहे क्या किजय जाम गुरु है वल ज्ञान अर ध्यान अनन पार जाम गुरु है वल शब्द साखी सो सच्चै कार जो गुरु गुरु अहनस जपै दास पट बेनत कह जो गुरु नाम रिद मैं तरै सो जन्म मरण दो थेरै गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवै गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावै गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अगन कटै सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करहो गुरु सत कब नल कह जिन गुरु ना देखियो न हो कियो ते अक्यत संसार मह गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समर्थ कल युग सुनत समाद शब्द जिसके रे फुन दुख नास सुखदायक सूरो जो तरत ध्यान बसत तेह नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परे रे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पी उस पे वन की वंछत सिद्ध को बिद मिलायो पूर्ण पो मन ठौर बसो रस बासन से ओ जो दहंग दिस्तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर विपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो
ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ, ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤ ਭਾਣ ਡਰਿਓ, ਭਨ ਦਾਸ ਸੁਵਾਸ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਪਾਰਸ ਪੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ, ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹਰ ਨਾਗ ਸਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ, ਫੁਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਸ਼ੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ, ਸੋ ਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ, ਗਨਕਾ ਪੜਤ ਪੂਰੇ ਤਹਿ ਕਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਏ, ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ, ਝੋਲਨਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨੀਆ, ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਨਾਮ ਨਾਮ ਨਿਦ ਅਪੈ, ਰਸਨ ਅਹਿਨਸ ਰਸੈ ਸਤ ਕਰ ਜਾਨੀਆ, ਫੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖੈ ਤੇ ਆਈਐ, ਅੰਨ ਮਾਰਗ ਤਜੋ ਭਜੋ ਹਰ ਗਿਆਨੀਆ, ਬਚਨ ਗੁਰ ਰਿਦ ਧਰੋ ਪੰਚ ਭੂ ਬਸ ਕਰੋ, ਜਨਮ ਕੁਲ ਉਧਰੋ ਦੁਆਰ ਹਰ ਮਾਨੀਆ, ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਭ ਸੁਖ ਇਤ ਉਤ ਤੁਮ ਬੰਛਵੋ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨੀਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤ ਕਰ, ਅਗਮ ਗੁਣ ਜਾਣ ਨਿਦਾਨ ਹਰ ਮੰਤਰੋ ਧਿਆਨ, ਅਹਿਨਸ ਕਰੋ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦੈ ਤਰ, ਫੁਨ ਗੁਰੂ ਜਲ ਬਿਮਲ ਅਥਾਹ, ਮੱਜਨ ਕਰੋ ਸੰਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਰੋ, ਨਾਮ ਸਚ ਰੰਗ ਸਰ, ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਕਰਤ ਦ੍ਰਿੜ ਭਗਤ ਹਰ, ਮੁਗਦ ਮਨ ਭ੍ਰਮ ਤਜੋ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਜੋ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ।

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सत युग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियं, हस्त कमल माथे पर धरियं, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए, गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसे बनवारी, ते लहना थाप जोत जगतारी, लहने पंथ कर्म का किया, अमरदास पल्ले कहु दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो, हर का नाम अखै निद अप्यो, हर नाम अखै निद चहो जुग, गुर सेवा कर फल लहियं, बंदे जो चरण सरण सुख पावै, परमानंद गुरमुख कहियं, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी, आद रूप कोखण परणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जा की, श्री रामदास तारण तरणं, जेहे अमृत बचन बाणी, साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल, गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते, जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग बंस तिलक सुंदर दशरथ, कार मुन बंछे जाकी सरनं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरनं, संसार अगम सागर तुलहा, हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण पग्गा ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै, तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच, काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करनं, सतगुर गुर सेव अलख गत जा की, श्री रामदास तारण तरनं, प्रताप सदा गुर का कट कट, प्रगास पया जस जन कै, एक पड़े सुने गावै, प्रभाते करे इशनान, इशनान करे प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं, कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं, रहया पूर बहुविध वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरनं, जिनों बात निश्चल त्रू जानी, तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं, जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत, परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर, मन बच क्रम से भी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसे दही पात खाहे जियो, देख रूप यातन रूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार, बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਲੱਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ

चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन ग्यंद, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तैं अगणत, तिनको मोह भया मन मद का। चौरासी लख जोन उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बिचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन

निरंजन जचना, गुरप्रसाद पाइए परमार्थ सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने, शिव ब्रंच तर ध्यान नित जिस वेद बखाने। निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गण समरथ तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथरा रसना रसै। श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया, ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन कौ। फुन त्रम तुजा फहरंत सदा, अग पुंज तरंग निवारण कौ। मथुरा जन जान कही जी साच, सो और कछु ना विचारन कौ। हर नाम बोहित बड़ो कल मैं, पवसागर पार उतारन कौ। संतत ही सतसंगत संग, सो रंग रते जस गावत हैं। धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप, रहे लिव तारना तावत हैं। मथुरा पन भाग पले उनके, मन इच्छित ही फल पावत हैं। रव के सुत को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चितलावत हैं। निर्मल नाम सदा परपूर्ण, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर, सदा सब दर्त नागर। संत मराल करै कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल युग दुर्त दूर कर बे कौ, दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरै फिरत सगल जुग, कब होक को उपावै आत्म प्रगास कौ। वेद बाणी सहत बरंच जस गावै जाको, शिव मुन गहे नात जात कबलास कौ। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट पेख किए फिरत उदास कौ। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी, नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास कौ। नाम निदान ध्यान अंतर्गत, तेज पुंज तिहो लोग प्रगासे। देख दर्श पटक परम पजत, दुख परहर सुख सहज बिगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत, आलस मुह जो कुसम सुभासे। बिद मान गुर आप थप्यो थिर, साचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहत, अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत, रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल, सेवक दास कयो एहो तथ। ताहे कहा परवा काहू की, जा कै बसीस धरयो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहयो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई। अपने आप ही पायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुर नर, गण गंधर्व खोजंत फिरे। अब नासिया चाला जोनी संपाओ, पुरखोत में आपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई, सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो, जय जग मैं तै हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी, एक मन तन मन धन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी, अगम ज्ञान रस रस ओ ही ओ। गुर अमरदास करतार।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव तरलोचन नामा अवर कबीर पण तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो मनसा कर स्मरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिध पावै सोई रामदास गुर बल पाण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो न रो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड्यो पास ता ते गौ हर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास तां ते संगत सगन पाए पाओ मान तुम मली आगर प्रगट सुबास ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जेह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ता ते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जीही कश कही ना जाई सोडी सरिट सगल तारन कहो अब गुरु रामदास कहो मिली बढ़ाई हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख

एको ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद श्लोक वारा ते वधीक महला पहला उतंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी ससड़ सुइया केव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़वड़ी सखिए तौल हरी से पीट हंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैण्या पार पहला वत्स ज्ञान कै

एको ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नावा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार्थ कीन कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौ मीन बिख्यन स्यों काहे रचियो निमख ना होहे उदास कहो नानक भज हर मना।

लियो जरा तन जीत, कहो नानक भज हर मना, औद जात है बीत। बिरद भयो सूजै नहीं, काल पहुंचियो आन, कहो नानक नर बावरे, क्यों ना भजै भगवान। धन धारा सम

सदा बस्त तुम साथ, तन तन जेह तो कौ दियो ता स्यो नेहो ना कीन, कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके ताम, कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए, कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए। जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना औध कटत है नीत। पांच तत् को तन रचियो जानो।

कट कट में हरजू बसे संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान उस्त निंदया नाहे जेह कंचन लोहो समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे।

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तहकट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौ मैं तजी, करता राम पशान। कहो नानक वह मुक्त नर, एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक भजै, सफल होहे तह काम। जेहबा गुण गोबिंद पजहो, करन सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना, परह न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार। कहो नानक आपन तरै, और न लेत उधार। जो सुपना यार पेखना, ऐसे जग को जान। इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारने, प्राणी डोलत नीत। कोटन मैं नानक को, नारायण जह चीत। जैसे जलते बुद बुदा, उपजै बिन सह नीत। जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु ना चेतई, मद माया कै अंद। कहो नानक बिन हर भजन, परत ताहे जम फंद। जो सुख कौ चाहे सदा, शरण राम की ले है। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे है। माया कारण ता वही, मूर्ख लोग या जान। कहो नानक बिन हर भजन, बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै, रूप राम तह जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो, बिसरयो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन हर

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंद। मन माया मैं रम रहे हो निकसत नाहिन मीत। नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई। चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए। कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान। इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सैशन में मीत। जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जेह प्राणी कै नाहे मन। जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यो सदा स्वान तजित नहीं नित। नानक एह बिद हर पयो एक मन होए एक चित। तीर्थ बरत अरदान कर मन में तरे गुमान। नानक ने फल जात तह ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन ज्योत ते हीन। कहो नानक यह बिद पई तउ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे। नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है
जान लेहो रे मीत। कह नानक

जो अनहोनी होए, एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है, परों आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे, कशु न होत उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ, कहो नानक एह बिपत मैं, टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो

राम नाम उर मैं गयो, जाके सम नहीं कोए। जेह सिमरत संकट मिटे, दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पईयो, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो, जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे, तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लगतरी है, सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैर भी बेलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिशाख सुनावे बंगालम मदमाद वगावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौसकिया लापे संग रागनी पांचौ थापे गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशको भारा खौ खटियाओ पौरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिला वही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी ले पार जा संग लाई पांचो वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्रबिंब मंगलन सोहाए सरस बान औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नाम दयावै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसीस दित्ते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उची मत पतकारा खाप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाण दी सेवा करदियां अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदियां अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति हुई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनियां पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होणा छे पौड़ियां आनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदियां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा

0: बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे ऐ गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसै सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसै सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासै, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण पई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You're listening to SeekNet Radio.

क्यों बुझे जान है बुझाई, आखन सुनना पौन की बाणी। इहु मन रत्ता माया, खसम की नजर दिल है पसंदे, खसम की नजर दिल है पसंदे, खसम की नजर।

नाम निदान अंतर हर सरब रहया चूका मन अभिमान हृदय कमल प्रगासिया लागा सहज ध्यान मन निर्मल हर रब रहया पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार हों मैं ममता मार कै हर डाक्या उरतार हों दिन

गया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हर से पील बलाए, देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए, जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है।

मन तन सौंपे आगे धरे होमे विच होमार तन गुरमुख सो परवान है जे कदे ना आवे हार कर्म मिले ता पाईए विण कर्म पाया ना जाए लख चौरासी तरस दे जिस मेले सो मिले हर आए नानक।

नानक शब्द रते हर नाम रंगाए बिन पैके ही लाग श्री राग महला तीजा घर ही सौदा पाई आए अंतर सब वथ होए खिन खिन नाम संभाली आए गुरमुख पावे कोए नाम निदान अखोट है वड़ पा...

पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख बसिया मन आए अंतर ज्योत परगासिया एक स्यों लिवलाए मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखया पाए गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए मेरे मन गुर शब्दी सुख होए गुरपू

आप होवा मेहरबान, सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना कौ राखदा अपनी कृपा तहार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार।

जपिया अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिया लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ शरणाई पाए हर दिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह।

अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निहचल तिस दरबार जो मंगिया सोई पाइए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन हो वह शांत एक मन एक त्याई है मन की लाह प्रांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधिय दिन विसरहो नहीं रात जिन

नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सतगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनहो विसार रहा गुण गो

दूर थान थन तर रव रहया प्रभ मेरा परपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियन सच सिरजोन जहान नानक जपिया सच नाम हों सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्यम कर हर जापना वडभागी तन खात संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन ना आवन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहा।

होए रहाव, सगल पदार्थ तिस मिले, सगल पदार्थ तिस मिले, जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा, सेवड पागी माए, गुर दाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लय तराए, कित मुख गुर साला ही है, करण कारण समरथ, से मथे ने चल रहे, जिन गुर तारिया हाथ, गुर अमृत नाम पिया लिया, जन्म मरण का पाथ, गुर परमेश्वर सेव्या, पै भंजन दुख लथ, सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अग खंड, जिन गुर सेव्या अपना, जमदूत न लागे डंड, गुर नाल तुल न लगई, खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया, सुख नानक मन महमंड, श्री राग महला पंजवां।

दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना सच छड़ जासी लख करोड़। सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख जाओ।

पंजवा कर सेवा करण कारण एक ओही जिनकी आ आकार तिसहत आवहु मन मेरे सर्ब को आधार गुर के चरण मन माहे त्याय गुर के चरण मन महे त्याय छोड़ सगल स्यान पा साज शब्द लिबलाए रहाओ दुख क्लेश ना पौ व्यापै गुर मंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए देख दर्शन मन साधारै पाप सगले जाहे हौं तिन कै बलिहारने जे गुर की पैरी पाहे साध संगत मन बसै साच हर का नाव सेवड भागी नानका जिन्ना मन इहो पाओ श्री राग महला पंजवा संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार।

विस्तार आप छोड़ सब होए रीणा जिस देव प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवां दो

तू वड पुरख सुजाना रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कहन

सच्चा नाम सास गिरास ना विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाइय सच नाम गुणतास।

गुरु शरणागति मरै न आवै जाए। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा अल्लाह।

जाए। नित रवे सुहागणी साची नदर रजाए। साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है। कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया, मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार नारी।

हेत प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों तेर दिन रहन विहाए अंक जलाओ तन जा लियो मन तन तन बल जाए अंक

लो आपे भगत बसीठ गुर कै शब्द सलाहना घट घट डीठ अडीठ आपे सागर बोहे था आपे पार अपार साची वाट सुजान तू शब्द लंघावन हार निडरिया डर जानिए बाज गुरु गुबार आस्थिर करता देखिए होर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदै पाए गुरड़ाखे से उबरे साचे स्यों लिवलाए।

श्री राग महला पहला गुर ते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहज

ज्ञान अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए गुप्त प्रगट सब जानिए जे मन राखै ठाए ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए कस कस

तुझे पतार मान रे राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाई है शब्द मिले रंग हो रहा गुर सेवा सुख पाई है हर बार सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणी गुर मेली गुण चार साच मिलो वर का।

सोए गुर भंडार पाइये निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिये पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मिटनो सतगुर असुर संहार भव जल बिखमंड रावण।

महला पहला रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़ी है पी विकसै असने जल मह जी उपाय कै बिन जल मरन तने मन रे क्यों छूट है बिन प्यार गुरमुख अंतर रव।

पीर रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै खे सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै के हे कर्म मिले सो पाई किरत पया सिर दे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल दुद

नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला मन मुख भुलै भुलाई फूली ठौर न काय। गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए। ज्ञान पदार्थ खोया।

बिन कवन पता आर अखर पढ़ पढ़ फुलिए देखी बहुत अभिमान तीर्थ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान गुरबिन किन समझाइए मन राजा सुल्तान प्रेम पदार्थ पाइए।

बहुत आजीवन मंगिया है, मुआ न लोड़ै कोय, सुख जीवन तिस आखिया, जिस गुरमुख बसिया सोए, नाम विहूणे क्या गणी, जिस हर गुर दर्शना होए, ज्यों सुपने निस फुलिया, जब लग निंद्रा होए, इउं सरपन कै बस जियड़ा, अंतर हों मैं दोए, गुरमत होए विचारिया, सुपना इहो जग लोए, अगन मरे जल पाइए, ज्यों बारक दूध है माए, बिन जल कमल सो ना थी है, बिन जल मीन मराए, नानक गुरमुख हर रस

मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, आन दिन भगत कर

थाए गुर शब्द दिढ़ावै रंग सिउं बिन कृपा लया ना जाए जे सौ अमृत नीरी है पी बिख फल लागै ताए से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुर नाल प्यार सतगुर का पाणा कमावंदे बिख होमै तज विकार मन हट

पंखी बिरख सुहावड़े उड है चौं दिस जाए जेता उड है दुख घणे नित दाज है तै दिल लाहे बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाए शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए अमृत फल हर एक।

समाए, हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए, पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए, गुरमति हर सदा पाया, रसना हर रस समाए।

जाता। प्रभ निकट वसै सबना कट अंतर गुरमुख विर ले जाता। नानक नाम मिले वडियाई गुर कै शब्द पछाता। श्री राग महला तीजा सहज।

गुर कै शब्द जीवत मरै, गुरमुख भव जल तरण, वड्डै भाग नाउ पाइय, गुरमत शब्द सुहाई, आपे मन बसिया प्रभ करता, सहजे रहया समाई, इकना मनमुख शब्द न पाव।

प्रतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कौ बल जाइय जित मिलिय परम गत पाइय।

हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। यो जगत परम भुलाया, आपहु तो दिखवाया। परताप लगा दोहागणी, भाग जिन्हां के नाहे जियो। दोहागणी क्या निशानियां, खसम हो कुथियां फिर हैं निवाणियां। मैले वेस न कामणी, दुखी रहन विहाए जियो। सुहागणी कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया। नदर

जियो हो सतगुर विटहो कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लहर लाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जां कौ जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो।

उठा लिया हुक्मी भांडे साजया तू आपे भन सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन दूजा भाव चुकाया।

बात बताया। गुरमुख लाहा ले गए मन मुख चले मूल गवाए जियो। तू वरना चिहना बाहरा हर दिसह हाजर जाहरा। सुन सुन तुझे ध्यान दे तेरे भगत रते गुणतास जियो। मैं जुग जुग दई ऐसे बड़ी गुर कट्टी मेहंदी जेवड़ी हों।

करम धर्म नहीं पूजा। नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै वणजारिया मित्रा, सरहंस उलथड़े आए। जोबन घटै जरुआ जणै, वणजारिया मित्रा आम घटै दिन जाए। अंत काल पछतासी, अंधले जां जम पकड़ चलाया।

कहो नानक भगत सोह है दरबारे, मन मुख सदा पवात, श्री राग महला चौथा, घर दूजा शांत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मुंद इयाणी पे अड़ै, क्यों कर हर दर्शन पिख है।

अलाथ अपेवे निहचल आसन पाया तह जन्म न मरण न आवन जाना संसार दुख मिटाया चित्र गुप्त का कागद फारिया जम दूता कछु न चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जपत परगासो सिमर

सतगुर तुठे लड़ली ने लाए नौ निद पाए नाओ सर्वस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के।

अधहरे गुण साध संग मिल गावे। नानक के स्वामी तार अनुग्रहो मन तन अंक समावे। दखना सो हंदड़ो हब ठाए कोई न दिसे डूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेट ते।

रंग रतड़ा हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास तन तन बन जवा

कमाए, कूड़ कुसात कमाए, गुर प्रसादी मन जने हर सेती लिवलाए। नानक गुरमुख सच कमावे, मन मुख आवे जाए पौड़ी। हर के संत सुनहु जन पाई, हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक, तिन जन लै हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम,

पूजिए बिन सतगुर बूझ ना पाए। जब तब संजम पाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवे दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख

मुख उजले हर दरगाह पहंदे जाही। सलोक महला दूजा, जो सिर साई नान वै सो सिर दी जय डार। नानक जिस पिंजर मह बिरहा नहीं।

करे जिस आपणी तिस कर्म प्राप्त होए। नानक करणे नानक कारण करते बस है, गुरमुख बूझै कोए महला तीजा। नानक हर नाम जिनी आराध्या, अन दिन हर लिवतार। माया बंदी खसम की, तिन अगै कमावै कार। पूरा पूरा कर छोड़या।

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा।

तौ आन सकत गल बांधिया। तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सार अवसर ना पछाणिया। उन्मत काम महा बिख भूलै पाप पुन ना पछाणिया। सुत संपत देख इहो मन गर्बिया राम हृदय ते खोया। अवर मर्त माया मन तोले तौ भग मुख जन्म बगोया।

प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करहो प्रतपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल।

जन नानक गुर मिल रहसै जियो। माज महला चौथा। हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग भौजल गुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर

अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरै अमृत लीचै जियो हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत हर नाम ध्याइए नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत हर नाम

मुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मन मुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरा बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला, शब्द आनंद करे सद केला। सहज गुफा महताड़ी लाई, आसन ऊच सवारिया जियो। फिर घिर अपने ग्रह में आया, जो लोड़ींदा सोई पाया। तृप्त अगाए रहया है संत हो, गुर अनुभव पुरख दिखारिया जियो। आपे राजन आपे लोगा, आप निर्वाणी आपे भोगा। आपे तख्त बह सच न्याई, सब चूकी कूक पुकारिया जियो। जेहा डिठा मैं ते हो कहया, तिस रस आया जिन भेद लहया। जो

भाग बनाया, तित कर सकिए मंगल गाया, आनंद बिनोद तितै कर सोह है, जो धन कंत सिंगारी जियो। सा गुणवंती सा वडभागण, पुत्रवंती सीलवंत सोहागण, रूपवंत सा सुगड़ विचखण, जो धन कंत प्यारी जियो। अचारवंत साई प्रधाने, सब श्रृंगार बने तिस ज्ञाने, सा कुलवंती सा सबराई, जो पिर कै रंग सवारी जियो। महिमा तिसकी कहन ना जाए, जो पिर मेल लई अंग लाए। थिर सुहाग वर अगम अगोचर, जन नानक प्रेम साधारी जियो। माज महला पंजवा, खोजत खोजत दर्शन चाहे, भांत भांत बन बन अवगाहे। निर्गुण

अतोले अकाल मूर्त अजूनी संभव मन सिमरत ठंडा थी मां जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊंच नीच करे प्रतपाला।

तुम दाते तुम पुरख विधाते तुम समरथ सदा सुख दाते सबको तुम ही ते बरसावे अवसर करो हमारा पूरा जियो दर्शन।

खीर अगावै ज्यों निर्तन तन देख सुख पावै त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो ज्यों अंधियारै दीपक परगासा परता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख सगले देखे।

साहिब पावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकुर सब बिद जान है ठाकुर के सेवक हर रंग मान है।

विचारा आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जियो जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूका हरिया।

से कर भले जिनी हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हौ बल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारे साध संग खिन माहे उधारे किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो किल विख काट होवा मन निर्मल।

गुण निदान अमृत हर नामा हर ध्याय ध्याय सुख पाया जियो मनसा धार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी।

भेटत संग साध संतन कह सदा जपौ दयाला जियो प्रभ अपना सास सास समारौ ए मत गुर प्रसाद मन धारौ।

जियो जल थल पूर रहया मेहरबाना सद बलिहार जाइय कुरबाना रैन दिनस तिस सदा त्याई जे खिन मह सगल उधारे जियो राख लिए सगले प्रव आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल।

गोविंद प्रभ नानक सर्व समाहया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जित सच त्याई है सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसह हर जन सच्चे नाम बिटहु कुर्बानो जियो सच बडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म न कह।

सफल एहा है कारी जियो, दृष्ट धार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या।

पछाण है। हों बलिहारी संतन तेरे, जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो। तू निर्वैर संत तेरे निर्मल, जिन देखे सब उतरह कलमल। नानक

सो गुर मिल निहचल कहना। प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावे अनदिन नित जागी। बहां पकड़ तिस स्वामी मिले, जिस कै मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे। संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाइय,

मनमुख पाप पचा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई।

को नदर निहाले। मेरा प्रभ अत ऊंचो ऊंचा कर कृपा आप मिला बनिया। माया मोह इहो जग सुता नाम विसार अंत।

है संसारा, मनमुख अंधे शोधना सारा। पंच दूत मुह है संसारा, मनमुख अंधे शोधना सारा। गुरमुख होवे सो अपना कर रखे, पंच दूत शब्द पचावणिया। एक गुरमुख सदा

जी जंत सब शरण तुम हरी, आपे धर देखहि कच्ची पक्की सारी। अनजने आपे कार कराए, आपे मेल मिला बनिया, तू आपे मेल है वेखहि हदूर, सब है आप रहया।

मिल रहया सहजे सहज समा बनया गुरमुख होवै सो एक सिउ लिवलाए दूजा परम गुर शब्द जलाए।

है। अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुना बनया। मन मुख भूला दूजै पाए खुआए नाम न लेवै मरै बिख खाए। आन दिन सदा विष्टा महवासा बिन सेवा जन्म गवावणिया। अमृत पीवै जिसनों आप पियाए।

अनहद तुम बाणी दर सच्चै सोभा पावनिया। निर्मल ते सब निर्मल होवै, निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै। निर्मल नाम लगे बड़ भागी, निर्मल नाम सुहावनिया।

मिलै ता चूकै फेरा, जां तुद भावै ता नाए रचावै, तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमति हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, एक सिउ लिव लागी।